0: নাম জগতৰ লোকে পৰম আনন্দে গায়।
1: কৃষ্ণ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: বিমল বৰা আৰু বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে কালি জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰি বান প্ৰভাৱিতসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লয়। ৰাজ্য আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কালি যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ সমজিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। সমজিলাখনত 47খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ এইদৰে কয়।
1: আজি আমি তিতাবৰ সমজিলাৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়া, জিলা আয়ুক্তকে ধৰি ইয়াৰ সমজিলা আয়ুক্ত আৰু বিষয়াসকলৰ লগত আমি এই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে 47খন গাঁও এফেক্টেড হৈছে আৰু এতিয়া পাৰ্মানেণ্টলি বৰহলা কলেজতে কেম্প আছে প্ৰায় 300 বা 400 মানুহৰ ভিতৰত, আৰু বাকী সকলো গাঁৱত তেখেতসকলে অস্থায়ীভাৱে উত্তত আছে নহ'লে ঘৰতে আছে। তেখেতসকলক আমি সকলোখিনি খোৱা বোৱা যিখিনি বস্তু ৰিলিফ দিছোঁ, গৰুৰ পশু খাদ্যও আমি আজি দিয়া আৰম্ভ কৰিছে, চিকিৎসকসকল গৈছে আৰু PHCয়ে খোৱা পানীৰো যোগান ধৰিছে, এনেধৰণে সকলো সা সুবিধা উপলব্ধ সকলোখিনিয়ে হৈছে।
0: শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতিয়ে অধিক সংকটজনক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। শিৱসাগৰ নগৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ পৰা দৰিকাপাৰালৈকে সমগ্ৰ 88 ৰোড পানীত বুৰ গৈছে। বানৰ ফলত বিজি ৰোডেৰেও যান বাহনৰ চলাচল প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে। ইয়াৰ উপৰি জেঙনিকটীয়া, ধাইআলি, হস্পিটেল ৰোড, বাবুপট্টি, দোলমুখ আদি ন ন অঞ্চলো বানৰ কবলত পৰাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলো শেহতীয়া বানত বুৰ গৈছে। জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে পৰিষদৰ সদস্যসকলক বানপীড়িত ৰাইজক যথাসম্ভৱ সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আহান জনাইছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কালি তেওঁৰ নিজ সমষ্টি বোকাখাটৰ বাদুলিপাৰা জগন্নাথ সামূহিক ভৱনত স্থাপন কৰা অস্থায়ী বান সাহায্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু দুৰ্গত পৰিয়ালসমূহলৈ আগবঢ়োৱা সাহায্য ব্যৱস্থাৰ বুজ লয়। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বানৰ ফলত গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় পথত যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈছে। বানৰ ফলত কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। ইপিনে বানৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইৰ ৰেলপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত উজনি অসমলৈ সকলো ৰেল সেৱা বাতিল কৰা হৈছে। নামনি মোৱা ৰেলসমূহ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বগীবিল হৈ উত্তৰ পাৰেৰে চলাচল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাজুলীলৈ সকলো ফেৰী সেৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে। শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দূৰ সংযোগ বিভাগে জিলাকেইখনত 24 জুলাইলৈকে বিশেষ ইণ্ট্ৰা চাৰ্কেল ৰোমিং সুবিধা কাৰ্যকৰী কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে জিলা তিনিখনত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত নিজৰ মোবাইল সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ নেটৱৰ্ক নাথাকিলেও নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে মোবাইল সেৱা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। উপভোক্তাসকলে কোনো মোবাইল সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ নেটৱৰ্ক সাময়িকভাৱে ব্যাহত হলে উপলব্ধ আন প্ৰতিষ্ঠানৰ নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এই পদক্ষেপ জৰুৰীকালীন যোগাযোগ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে উদ্ধাৰ সাহায্য আৰু পুনৰ বাসন কাৰ্য অধিক ফলপ্ৰসু কৰি তোলাত সহায়ক হ'ব। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।
2: বেটা, মই কাল আপনে ভতিজেকে ঘৰ হকে আয়া, দেখকৰ হৈৰান ৰহ গিয়া কি ৱো লোগ দিন ভৰ এচি চলাতে হে, ৰোজ ৱাশিং মেচিন চলাতে হে, ঘৰ মে দো দো ফ্ৰিজ হে, ফিৰ ভি উসকা বিজলী বিল পতা হে কিতনা আতা হে, জিৰো। মেনে পুছা তো ভতিজা বোলা, চাচা জি সব উপৰ ৱালে কি দয়া হে, মতলব সোলাৰ পেনল কি, মেনে সোচা আপ তো লগৱানা হি পড়েগা। PM সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজলী যোজনা, জুড়নে কে লিয়ে ৰেজিষ্টার কৰে PM সূৰ্য ঘৰ.gov.in পৰ।
3: হৰ ঘৰ সূৰ্য ঘৰ।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसिडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसिडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसिडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसिडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
5: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
7: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
8: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीयू 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
10: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और

0: विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है। पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा, दैनिक जागरण की सुर्खी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: Our correspondent covering the President's visit to North Macedonia has filed this report.
4: President Murmu said India's pharmaceutical industry is

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি, 12:05ত ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवान को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉ जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरा

0: hundreds of civilian mariners and undermine freedom of navigation. In China Open Badminton, India's PV Sindhu will take on compatriot Unnati Huda in the women's singles round of 32 in Changzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading more than 0.5% down in the forenoon session today amid geopolitical concerns. The Sensex shed 556 points at 76,914, while the Nifty fell 148 points to 24,040. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रांत ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

सैनिक भाइयों, अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरमय गीतों का सुहाना सफर। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

सैनिक भाइयों, अब से कुछ ही पलों में हम सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर हम सुनेंगे फिल्मी नगमे। 1:05 पर हम सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

सैनिक भाइयों, समाचार के बाद 1:10 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम तरंग। 1:40 पर प्रादेशिक संगीत। दिन के 2 से मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं पहला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, हम आपके हैं कौन फिल्म से। बोल है देव कोहली के और संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लकी फिल्म से अदनान सामी की आवाज में। बोल है समीर के और संगीत से सजाया है अदनान सामी में।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं न्यूयॉर्क फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज में। बोल है संदीप श्रीवास्तवा के और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रेडी फिल्म का ये गीत तुलसी कुमार और केके की आवाजों में। बोल है नीलेश मिश्रा के और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

0: इसी गीत के साथ दैनिक कार्यक्रम आज का गीत यहीं समाप्त होता है।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम फिल्मी नगमे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

सैनिक भाइयों, हर दिन की तरह 12:10 पर हम हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में और सुनवाएंगे दिन का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम तरन्नुम, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

1:10 पर हम सुनवाएंगे कार्यक्रम स्वर छाया, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, 2 बजे से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम होगा गीत रंगीले और इसी के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

सैनिक भाइयों, भाइये सुनते हैं फिल्मी नगमे। पहला नगमा हम सुनेंगे काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमे कार्यक्रम के अंतर्गत अगला नगमा। आइए सुनते हैं साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से गीता दत्त की आवाज में।

0: सैनिक भाइयों, फिल्मी नगमे कार्यक्रम के अंतर्गत अगला नगमा आइए सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: ये जो चिलमन है

इसी नगमे के साथ फिल्मी नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, अब से आप हमारा ये प्रसारण डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर सुन सकते हैं। सैनिक भाइयों, हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो कम फिल्में करने के बावजूद अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। अपने सहज अभिनय, आकर्षक व्यक्तित्व और युवा अंदाज से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले ऐसे ही अभिनेता हैं जायद खान। प्रसिद्ध अभिनेता संजय खान के पुत्र जायद खान ने वर्ष 2003 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और मैं हूं ना, चुरा लिया है तुमने, रॉकी जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई। आज के पूरे कार्यक्रम में हम जायद खान की फिल्मों के कुछ मधुर और यादगार गीत सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला गीत केके और शान की आवाज में 10 फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरंग। सैनिक भाइयों, जायद खान के अभिनय के साथ साथ उनकी सहजता और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व भी लोगों को पसंद आया, इसलिए वे इतने लोकप्रिय भी हुए। आइए सुनते हैं अगला गीत, लव ब्रेकअप जिंदगी फिल्म से, बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, जायद खान ने रोमांटिक भूमिकाओं के साथ साथ एक्शन और थ्रिलर फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका प्रयास हमेशा अलग अलग तरह के किरदार निभाने का रहा। अब सुनते हैं दोस्ती, रिश्तों और जिंदगी के खूबसूरत एहसास को समर्पित ये गीत। फिल्म रॉकी से हिमेश रेशमिया और आकृति कक्कर की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, जिंदगी में रिश्ते कई रंग लेकर आते हैं। कभी हंसी, कभी नाराजगी, कभी मिलन तो कभी बिछड़ने का एहसास। इन्हीं भावनाओं को फिल्मों के गीत बड़ी खूबसूरती से हमारे दिलों तक पहुंचाते हैं। अब बारी है जायद खान की फिल्म मैं हूं ना के एक लोकप्रिय गीत का, सोनू निगम और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, जैद खान ने अपने करियर में कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की और हर फिल्म में कुछ नया करने का प्रयास किया। भले ही उन्होंने बहुत अधिक फिल्में ना की हो, लेकिन उनकी फिल्मों के कई गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत शब्द फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी, देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ है।

0: खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा।
1: सैनिक भाइयों, किसी भी अभिनेता की पहचान केवल उसके अभिनय से ही नहीं बल्कि उनकी फिल्मों के संगीत से भी जुड़ा होता है। जायद खान की कई फिल्मों के गीत आज भी रेडियो और श्रोताओं की पसंदीदा सूची में शामिल है। इसी के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत, वादा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, प्रादेशिक संगीत। आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ चुनिंदा असमिया गीतों को। पहला असमिया गीत आइए सुनते हैं तुमार खोपनोते एल्बम से चयनिका कलिता की आवाज़ में।

सनी भाइयों, अगला असमिया गीत आइए सुनते हैं। रत्नाकर फिल्म से जुबिन गार्ग और गायत्री हजारिका की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला असमीय गीत आइए सुनते हैं, जूरी एल्बम से कृष्णमुनि नाथ की आवाज में।

0: इस गीत के साथ प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Stalemate continues in Parliament over neat paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad Foreign Minister

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की

0: अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है

0: मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
2: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
3: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन

0: And we had carried our legacy forward and in making ships. So very good progress has been made in Atmanirbharta as far as shipbuilding is concerned.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल-पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
2: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
1: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलमरु मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार 4th दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद एक बार फिर स्वागत है आज के प्रसारण में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत आइए सुनते हैं बाजीगर फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहब्बते फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, प्रीत लेरी कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म से अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में।

इसी गीत के साथ प्रीत लहरी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का प्रसारण। कल दोपहर 12:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं अंशु झा लेती हूँ आपसे विदा। जय हिंद।

0: जरा सोचिए, हमारी हर नई सोच, हर खूबसूरत याद, हर मुस्कान और हर उपलब्धि की शुरुआत एक स्वस्थ मस्तिष्क से होती है। नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं दिमाग सही तो हर मुश्किल आसान, दिमाग परेशान तो हर खुशी भी बेकार। दोस्तों, हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है सभी को मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और ये संदेश देना कि स्वस्थ मस्तिष्क हर व्यक्ति का अधिकार है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड ब्रेन डे पर इस वर्ष की थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, और यही विषय हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, यानी हर व्यक्ति तक मस्तिष्क स्वास्थ्य सेवाओं की समान और सुलभ पहुंच, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क ही हमें सोचने की शक्ति देता है, सीखने की क्षमता देता है और सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास देता है और जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक और न्यूरोसर्जन, जो बताएंगे कि मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर मीना चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज के हमारा वर्ल्ड ब्रेन डे है और हमारी थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, तो इससे क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है?
2: ये बहुत ही अच्छी थीम रखी गई है। जैसे मैं कुछ साल पहले ले जाना चाहूँगा आप लोगों को, हमको ऐसा देखा गया था कि पहले जो न्यूरोसर्जरी की जो सर्विसेज थी वो सिर्फ टर्शरी केयर सेंटर्स में होती थी, टायर वन सिटीज में होती थी। तो इस चक्कर में क्या होता था कि जो अंदर हमारे भाई लोग रहते हैं या जो बहुत टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में रहते थे, उनको सर्विसेज नहीं मिल पाती थी समय से, और जिसके चक्कर में कई बार उनकी मृत्यु हो जाती थी या कई बार वो समय पर पहुंच नहीं पाते थे, जिससे बहुत सारे विकार हो जाते थे उनके शरीर के अंदर। तो और दूसरी चीज़ की ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल मतलब कि हर एक को उसका बीमारी का इलाज मिले, अमीर गरीब किसी भी रूप से उसमें भेदभाव ना हो, और हर मरीज को जो भी इलाज है उसका संपूर्ण रूप से उसका इलाज मिले, हर इंसान को किसी भी भेदभाव से परे।
0: मैम, आप क्या कहेंगी इस पे?
1: जो मस्तिष्क स्वास्थ्य है वो हमारे जीवन का आधार है, और बहुत ही अच्छा है कि ब्रेन हेल्थ में हम एक्सेस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। तो मैं इससे दो चार बिंदुएं जोड़ दूं। एक तो डॉक्टर वार्ष्णेय सर ने बहुत अच्छा बताया, जो न्यूरोसर्जिकल बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, चोट है, साथ साथ जो साइकेट्री की परेशानियां हैं, है ना, डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, या नशे की प्रॉब्लम्स है, या न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, हंटिंगटन्स डिसऑर्डर है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सब बीमारियाँ ऐसे हैं कि हमें पता है कि इनका इलाज संभव है, लेकिन मरीजों तक इनका इलाज नहीं पहुंच पाता। तो हर एक को इलाज मिले, है ना, उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो कि वो पा सके उस इलाज को, अफोर्डेबल हो, उसके हालात ऐसे हों कि उसको निशुल्क या कम शुल्क में उसको इलाज मिल पाए, और एक्सेप्टेबल हो कि वो इलाज ऐसा हो जो मरीज स्वेच्छा से ग्रहण करे, और इलाज की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, बंधन भी होते हैं, उसको भी माने। तो ये एक बहुत व्यापक विषय है, लेकिन ये हम सब से जुड़ा है, और अच्छी बात है कि आज हमारा दृष्टिकोण सिर्फ इलाज पे नहीं है, एक्सेसिबिलिटी पे भी आ गया है कि इलाज है, लेकिन अगर मरीज को नहीं मिल रहा तो वो इलाज उपलब्ध तो नहीं हुआ ना, तो सबके लिए सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबको इलाज मिले।
0: जैसे कि आज वर्ल्ड ब्रेन डे है, तो हेल्दी ब्रेन यानी स्वस्थ मस्तिष्क किसे कहा जाता है डॉक्टर राहुल?
2: स्वस्थ मस्तिष्क देखिए आज की डेट में तो मैं कहूँगा होना बहुत ही मुश्किल है, बस यस हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहे। सबसे एक जो एक बहुत ही पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके मस्तिष्क को आघात लगे, आप कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे आपको जी आपका हम अगर देखेंगे तो एक बहुत ही विशेष साइकिल होती है, आपका बीपी बढ़ता है, ब्रेन में और विकार स्ट्रोक होने का संभावना होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क मींस आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में मैडम भी बताएंगी, थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूँ कि आपको आपका मस्तिष्क में ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में कोई विकार नहीं होना चाहिए, एंड यस ऑफकोर्स डाइट, आपको डाइट अपना ऐसा रखना है कि आपका मस्तिष्क जो प्रमोट मतलब जो आपकी बॉडी प्रमोट करती है आपके ब्रेन को, वो सब चीज़ों को आप खाइए तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा एंड सोचने का ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होनी चाहिए।
0: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट हेल्दी ब्रेन किसे कहेंगे हम?
1: जब हमारा ब्रेन एंड माइंड है ना, जो मन और मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में है, वो हमें मदद दे रहा है और वो हमें जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो हमें मदद देता है, फैसिलिटेट करता है। जब वही ब्रेन और मस्तिष्क और माइंड मन विकार होता है तो वो हमें हमारी जो भी हम चाहते हैं करना दिन में जीवन में वो हम नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छी परिभाषा है फंक्शनल उस पर कि अगर मस्तिष्क हमें मदद देता है हमें जीवन चलाने के लिए तो वो तो हेल्दी है, और नहीं देता तो यानी वो हेल्दी नहीं है। इसके आगे बहुत सारी बीमारियां हैं, तो अगर बीमारी है तो फिर मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है।
0: कैसे हम मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
3: नमस्कार, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं गाड़ी चला रही थी और मैंने बस ट्यून इन किया तो आपका प्रोग्राम सुना और मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ सकूँ?
0: जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, और हमारे इस कार्यक्रम का यही प्रयास है कि हम आपके सवालों के जवाब दें। जो जो श्रोता हमें कॉल करते हैं अपनी परेशानी लेकर आते हैं, जी बताइए।
3: मेरा 14 साल का एक बच्चा है और वो बहुत स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज और आफ्टर स्कूल करता है, पर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में यही झगड़ा चलता रहता, तो क्या मतलब यही अनबन रहती है, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ उसकी स्लीप टाइम को लेके, भले ही टेस्ट हो या कुछ भी प्लान हो या कुछ भी करना हो, आई मेक श्योर कि वो 8:30 तक सो जाए ताकि उसकी स्लीप 10 आवर्स की मिनिमम या 9.5 आवर्स की मिनिमम तो हो। बट मेरे हस्बैंड कहते रहते हैं नहीं, अब तो अब एज बढ़ रही है, पढ़ाई बढ़ेगी तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इस एज में कितना अप्रोप्रिएट है स्लीप और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रेन डेवलपमेंट पे, स्पेशली एट दिस कॉग्निटिव लेवल?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जो स्लीप है, निद्रा है, वो उम्र के साथ कम भी होती है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो शायद पूरे दिन सोता है और सिर्फ दूध पीने के लिए उठता है। आपका बच्चा 14 साल का है तो उसको 8 घंटे की नींद उसके लिए काफ़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो 9 घंटा सोता है तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे, और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट 7.5 घंटे भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि घड़ी देख के ही बच्चे को सुलाना है, लेकिन हाँ कम नींद नहीं होनी चाहिए, उससे मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहता, बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण मिलता है, और बच्चे क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो स्कूल में जो पढ़ते हैं जितनी भी याददाश्त है वो नींद के दौरान कंसोलिडेट होती है। तो अगर नींद नहीं अच्छी होगी, रात भर जगेंगे तो अगली सुबह पेपर में नहीं लिख पाएंगे, तो नींद की आवश्यकता है, लेकिन हम रिजिडली नहीं कह सकते कि 10 घंटे ही सोना है बच्चे को। आप बच्चे की रिक्वायरमेंट देखिए, और ये भी ज़रूरी है कि समय से सोए, सूर्य के साथ जगें और सूर्य के साथ सोए। बहुत सारे बच्चे रात भर जगते हैं और कहते हैं हम दिन में सो लेते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है।
3: जी जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द कॉल एंड मैसेज।
1: शुक्रिया, शुक्रिया आपका।
0: आज रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पर, बातचीत जारी रहेगी लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: वर्ल्ड ब्रेन डे पे हम बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर
1: दीदी
0: रहे हैं?
1: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
1: हाँ, मेरा पूछना है कि एक बीमारी है डिमेंशिया, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई,

0: डी जनरेशन होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की इकाई है, वो टूटना और बिखरना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे अल्जाइमस डिमेंशिया है, कुछ डिमेंशिया होते हैं जो बीपी अगर तेज़ हो और स्ट्रोक हो जाए, या डायबिटीज़ हो, या पोल्यूशन में रहें, तो इन सब के कारण भी वैस्कुलर डिमेंशिया हो जाते हैं कि दिमाग में खून का जो दौरा है वो उतने अच्छे से नहीं चलता, या तो ब्लॉक हो जाता है या जो धमनी है वो फूट जाती है। फिर कुछ डिमेंशियाज होते हैं जो हम न्यूट्रिशनल डिमेंशियाज कहते हैं। बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, उनकी डाइट में कई बार B12, फॉलेट ऐसे वाइटमिन कम हो जाते हैं, उसके कारण भी डिमेंशिया हो जाते हैं। थायराइड की परेशानी हो, हाइपोथायरायटिज्म हो, तो भी डिमेंशिया हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे रिवर्सिबल डिमेंशिया है ना, और कुछ हमारे ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं। डिमेंशिया किस कारण से है उसका इलाज उसके अनुसार ही है। जहाँ तक बात की सर ने कि एलोपैथी में क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो याददाश्त को सुधार सके, तो हमारे यहाँ भी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे याददाश्त सुधारने में या उसको मेंटेन स्टेबल रखने में मदद मिलती है, और वो डॉक्टर की संरक्षण में उनकी एडवाइस पे, सलाह पे ही लेनी चाहिए। क्या तरीके हो सकते हैं अपने याददाश्त को सही रखने के लिए? एक उम्र के बाद अगर जितना आप अपने दिमाग से काम लेंगे उतना आपका दिमाग सुचारू चलेगा, है ना, मशीन की तरह दिमाग होता है, तो यूज़ इट और लूज़ इट। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम उम्र के साथ साथ छोड़ते जाते हैं, फिर वो काम छूट ही जाते हैं, तो अब ब्रेन को पता चल जाता है कि हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर विकार आता है तो डॉक्टर को भी नहीं पता चलता, मरीज़ को भी नहीं पता चलता। स्वस्थ जीवन शैली बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे वो तंबाकू ही क्यों ना हो और शराब हो या कोई भी नशीला पदार्थ हो, तो उसको छोड़ ही देना चाहिए, चाहे उम्र कितनी भी हो, क्योंकि इन सब का दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। डाइट अच्छी रखें, पौष्टिक आहार लें, और अगर विटामिन्स की कमी है तो वो विटामिन्स लें। एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है, इससे सिर्फ शरीर की वर्जिश ही नहीं होती, दिमाग में भी खून का दौरा ठीक चलता है, तो दिमाग को भी इसका लाभ मिलता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करके अपनी अच्छी उम्र में अच्छी याददाश्त को पा सकते हैं, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो इसके परिणाम उस समय कई बार नहीं नज़र आते, लेकिन कालांतर में 10 साल 20 साल बाद हम वो देखते हैं। तो अगर हमें 60-65 में कुछ बीमारियां पता चलती हैं कि डिमेंशिया हो रहा है, तो उसकी जेनेसिस है, उसकी शुरुआत 40-45-50 साल में हो जाती है। तो ये थोड़ा सा लंबा हिसाब है, तो शुरुआत से अपना ख्याल रखेंगे तो अच्छी उम्र में अच्छी ब्रेन हेल्थ पाएंगे।
1: तो अब हम डॉक्टर राहुल से जानते हैं कि ऐसी कौन सी और बीमारियां हैं जिनका असर हमारी माइंड पे, ब्रेन पे, इस पे पड़ता है।
2: अच्छा, मैं मैडम ने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला। मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो ब्रेन होता है वो अराउंड 4-5 ईयर्स तक 90% डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो होता है हमारा

0: इनका असर हमारी माइंड पे, ब्रेन पे, इस पे पड़ता है।
1: अच्छा, मैं मैडम ने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला। मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो ब्रेन होता है वो अराउंड 4-5 ईयर्स तक 90% डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो होता है हमारा

और डॉक्टर वार्ष्णेय सर आपके दूसरे सवाल का जवाब देंगे। आपने पहला सवाल पूछा था साइकोसिस के विषय में। साइकोसिस दिमाग की एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसमें कई लक्षण होते हैं, जैसे भ्रम होना, किसी व्यक्ति को लगता है कि शायद उसके कोई खिलाफ है या उसका कोई बुरा चाहता है, या ब्रेन के विकार हो रहे हैं, या वो समझता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो दूसरे लोगों के साथ अनुभव नहीं होते, या उसके कुछ कानों में आवाज़ें आ सकती हैं जो दूसरों को नहीं सुनाई देती। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार अपना ख्याल नहीं रख पाता, वो खाने पीने का, नहाने धोने का ख्याल नहीं रख पाता, काम नहीं कर पाता। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती और ये एक सीवियर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि जानकारी कम है तो लोग समझते हैं ये ऊपरी पर आया है, किसी ने कुछ कर दिया है, और डॉक्टर के पास समय रहते नहीं पहुंचते। समय के साथ पहुंचे तो बहुत अच्छा इलाज।

0: लिए परामर्श जरूर लें।
1: देखिए, जहाँ तक आपने ब्रेन ट्यूमर की बात करी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। मैं आज आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ अमूमन लोगों में धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया अब तो मैं बच नहीं सकता, ये पूर्णतः मैं गलत बोलूँगा इसको। आज की डेट में जो ट्यूमर्स होते हैं उनका ऑपरेशन संभव होता है, और टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट आ गया है कि जैसे अभी हम लोगों बोला कि ब्रेन हेल्थ, मतलब आपके डेट जब हम ट्यूमर को ऑपरेट करते हैं या जिस भी पद्धति से ट्यूमर का इलाज करेंगे, वो सिर्फ आपके ट्यूमर को ही असर करेगी और आपका आजू बाजू के ब्रेन में कुछ असर नहीं आता है। तो आप ऑपरेशन के बाद ट्यूमर जब आपका ठीक हो जाएगा, आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं जैसे कि आप पहले जिया करते थे। तो मेरा सभी से आग्रह है कि कुछ भी ब्रेन में ट्यूमर होता है तो प्लीज़ इसको भगवान का देन समझ के अपने ग्रहण ना करें, आप इसका इलाज कराएं, आप अपने नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि ट्यूमर की बात करी तो क्या इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं?
1: जी, ट्यूमर्स के मैं मतलब पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है ट्यूमर का वो होता है हेडेक। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कृपया ये ना समझें कि हर हेडेक में ट्यूमर होता है। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर्स का डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर्स कौन सी लोकेशन पे है, किस हिस्से में है, मतलब

0: बात ही रह जाएगी।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन पहले दोपहर के बाद से लेफ्ट या राइट साइड की तरफ चक्कर आ रहे हैं, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं, इसका इलाज बताएं। सतीश कुमार, उम्र 65 साल, रोहिणी, दिल्ली से।
2: देखिए, चक्कर आने के अगर ऐसे तो बताना मुश्किल होगा कि चक्कर आने के आपके शरीर में बहुत सारे कारण होते हैं। या तो आपका बीपी ज़्यादा हो, बीपी कम हो, या फिर एक बोलते हैं बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो, आपके कान में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कई बार वो हिल जाते हैं, इसके कारण चक्कर आते हैं। तो इलाज तो हर चक्कर का क्या कारण है पहले तो वो खोजना होगा, इलाज उसके हिसाब से होगा। मेरे आपको यही एक एडवाइस है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको सही तरीके से जांच करके आपको उसके बारे में ट्रीटमेंट बताएगा।
1: बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, हेल्दी ब्रेन कैसे रखें, उस पर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: जी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है, मैं ग्राम नंगोला हापुड़ यूपी से बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
1: मेरा सवाल ये है कि जब कोई इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी याददाश्त कमजोर क्यों हो जाती है, और इसका उपाय भी हो तो आपके पास उपाय बताएं।
2: त्यागी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इससे मिलता जुलता सवाल पहले भी पूछा है। डिमेंशिया नाम की एक बीमारी होती है जिसके कारण याददाश्त में असर पड़ता है, याददाश्त कम हो जाती है। इसके विभिन्न कारण हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें न्यूरॉन बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ कारण हैं कि बीपी, शुगर, इन बीमारियों के कारण भी दिमाग में खून का दौरा ठीक नहीं जाता, कुछ कारण हैं कि हम जो खान पान हमारा सही नहीं होता कभी, तो विटामिन डिफिशेंसीज हो जाती हैं, सिर में चोट लग जाए तो पोस्ट टीबीआई डिमेंशिया हो जाते हैं। तो विभिन्न विभिन्न कारण हैं और कारण के अनुसार ही इलाज होता है। किसी भी साइकियाट्रिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें अगर इस तरह की परेशानी हो, पूरा आकलन कराएं और उसके बाद ही इलाज संभव है।
0: जैसे कि अभी मैम ने कहा सिर पे चोट लग जाती है, तो डॉक्टर राहुल आपसे जानना चाहेंगे अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, अगर इमीडिएटली गिर जाए या सिर पे चोट लग जाए तो इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करें?
3: देखिए, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको सर में चोट लगने के बाद, जैसे मान लीजिए बहुत हल्का फुल्का हेडेक नहीं, सीवियर हेडेक हो रहा है आपको, आपको वॉमिटिंग आ रही है बार बार, या आपको लग रहा है कि आपको कभी मिर्गी के झटके आ जाते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि मेरे हाथ पैरों में किसी साइड में थोड़ा कमजोरी आ रही है, मुझे देखने में दिक्कत आ रही है, ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, सारे नहीं। और मेरा यही मानना है कि अगर आपको हेड इंजरी होती है, कुछ इंजरी जिसको बोलते हैं कनकशन इंजरीज होती है, उसमें थोड़ी देर के लिए आपकी याददाश्त भी चली जाती है, तो एक बार आप डॉक्टर से एवेल्यूएट जरूर कराएं। एंड यस, ऑफ कोर्स एक चीज मैं भूल गया कि अगर कान से, नाक से, कहीं से भी खून आता है तो भी एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बट आप किसी भी सर की चोट को, कि मैं छोटी सी हाइट से गिरा था या मुझे हल्की सी चोट लगी है, उसको आप नज़रअंदाज ना करें, कभी भी वो सीरियस हो सकती है आपको। और डिमेंशिया पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं, कि देखिए डिमेंशिया आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ज़िंदगी भर चलेगी। आप गाड़ी भी खरीदते हैं तो वो धीरे धीरे चलते चलते चलते चलते उसमें भी विकार आने लगते हैं, यही चीज़ हमारे दिमाग के साथ भी होता है। आपके न्यूरॉन, जब आपकी उम्र बढ़ती है आपके न्यूरॉन लॉस होता है, जिसको हम सीनाइल डिमेंशियाज बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ यहाँ पे अपने संजीवनी बूटी खा के नहीं आई है जो हमेशा चलेगी आपके पास।
0: डॉक्टर मीना आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल के लाइफस्टाइल में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई स्ट्रेस में है, बहुत तनाव रहता है, बच्चों को पढ़ाई का रहता है, जो जॉब कर रहे उनको काम का रहता है, तो कैसे वो अपने आप माइंड रिलैक्स करें और इजीली अपना वर्कआउट कर ले, हेल्दी ब्रेन कैसे रखें?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें मानना है कि हमें स्ट्रेस है ना, और फिर हमें समझना है कि हमें स्ट्रेस क्यों है। अगर हम आकलन करें, ज़्यादातर जो शहर की बिजी ज़िंदगी है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस है, ऐसे कोई मतलब पहाड़ गिरने का स्ट्रेस तो बहुत कम होता है ना। छोटी छोटी बातों से हम कोप अप नहीं कर पाते और उसको अपने दिल में बसा के रख लेते हैं, तो इससे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हमेशा ख़राब नहीं होता, एक स्टेज तक हमारी परफॉर्मेंस सुधरती है। अगर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो हम पढ़ाई ज़्यादा करते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो स्ट्रेस का पहचानना ये प्रथम स्टेप है। उसके बाद क्या होता है कि हम समझें स्ट्रेस क्यों है और हम स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको हम डील करने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है, हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, कुछ हॉबीज़ रखें, थोड़ी स्पिरिचुअल साइड भी डेवलप करके रखें। जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन लेट्स टॉक, एक नारा दिया था WHO ने, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ स्ट्रेस लेट्स टॉक, कुछ भी आपको परेशानी है किसी से बात करके

0: मन हल्का कर लीजिए तो मन हल्का हो जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि आज स्ट्रेस है तो ज़रूरी नहीं कल भी रहेगा, एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो पॉजिटिव माइंड से शुरुआत करें, अपने को हिम्मत रखें, अगर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं वो भी निकल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, है ना, ये परिस्थिति समय के साथ सुधर भी जाएगी अगर हम अच्छे चुनाव करें, हम अपने आप को डिस्ट्रेस करने का प्रयास करें। और अगर स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं तो ज़रूर मदद लें, किसी भी मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं अगर लगता है कि हम स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस के साथ साथ और शारीरिक विकार भी आना शुरू जाते हैं। जैसे डॉक्टर राहुल सर ने पहले कहा, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर डायबिटीज़ है तो उसका जो कंट्रोल है वो गड़बड़ा जाता है, तो अगर ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रेस में कर रहे हैं कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। तो स्ट्रेस अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मदद लीजिए, मदद संभव है। जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली के तो सभी सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा के विभाग हैं, तो ज़्यादा बढ़ा के मदद लेने का क्या लाभ है ना, पहले ही मदद लें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स हैं, पॉडकास्ट हैं, नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, इतनी विधाएं हैं। लेकिन क्या है, हमारे पास जानकारी या तो नहीं होती या होती है लेकिन हम अमल नहीं करते, अमल करते हैं तो हम रोज़ अमल नहीं करते। तो ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है, स्ट्रेस को हमें मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना सीखना ही पड़ेगा, और तभी हम कामयाब होंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, सर नमस्कार, व्हाट्स एन इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड हाउ इट इज मेजर्ड एंड इंक्रीज्ड।
0: देखिए, जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, ऐसे तो नापी नहीं जा सकती, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनमें बुद्धिमत्ता थोड़ी कम होती है, उनके लिए हम अलग विषयों का चुनाव करते हैं, उनके लिए हम अलग कैरियर गोल्स बनाते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चे की उम्र के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, उन टेस्ट पे अगर स्कोर कम आता है तो हम उनकी इंटेलिजेंस को कम बताते हैं, स्कोर काफ़ी कम है तो उन्हें डिसेबिलिटी कार्ड या विकलांगता प्रमाण पत्र मिलता है, भारत सरकार की तरफ से UDID वेबसाइट पे अप्लाई करके वो मिल जाता है। इंटेलिजेंस ऐसे बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन इंटेलिजेंस जितनी है उसको हम अच्छी तरह अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर 100 110 की इंटेलिजेंस है और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और 90 की इंटेलिजेंस है और अच्छे से इस्तेमाल किया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 70 से कम है तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। कृपया करके उन बच्चों को डांटे नहीं, मारे नहीं, फटकारे नहीं, उनकी उतनी ही बुद्धि है तो उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करें।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, स्ट्रेस कैन टेक ब्रेन टू व्हाट वर्स्ट लेंथ्स, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, एल्जाइमर, डिमेंटिया और स्कल विल ब्रेक, कैन ब्रेन ट्यूमर्स बी कॉज्ड बाय स्ट्रेस।
2: सी, स्ट्रेस एज अ कॉजिंग अ ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होता है, बट यस, एक विशेष साइकिल होता है। आप स्ट्रेस लेंगे, आपका बीपी बढ़ेगा एंड डेफिनेटली आपके ब्रेन हेमरेज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो स्कल ब्रेक तो सर मैडम ऐसे नहीं हो पाता है कि आप स्ट्रेस से आप लेंगे कि स्कल ब्रेक होगा, नहीं, बट यस, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसके, जैसे मैडम ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एंड अगर मैं आपको जाऊँगा कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो ब्रेन हेमरेज के रिस्क काफ़ी हाई रहता है। इनफैक्ट हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी कॉमन कॉज फॉर अ ब्रेन हेमरेज एंड स्पेशली इन ओल्डर पर्सन्स।
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, माई सेल्फ सौरभ सिंह चौहान, लखनऊ यूपी से, माई क्वेश्चन इज, क्या बार बार या कभी कभी हेडेक होना भी कोई बीमारी है ब्रेन की, प्लीज रिप्लाई।
2: देखिए, हेडेक अमूमन आज की डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको नहीं होता होगा, और हेडेक, हर हेडेक, मैं फिर बोलना चाहूँगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ये अपने दिमाग में बिठाइए। हेडेक्स आर वेरी कॉमन, बहुत अलग अलग तरह के हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन्स आर वेरी कॉमन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, बहुत तरीके के हेडेक होते हैं। तो आपको अगर बार बार हेडेक होता है, कई बार चश्मा, हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं, हम चश्मा नहीं लगाते हैं, वो हेडेक के कारण होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो हेडेक के कारण होता है। तो आप हेडेक अगर बार बार होता है तो डॉक्टर से संपर्क करिए, अपना जांच करवाइए और वो आपको सही इलाज देगा और वो ठीक हो जाएगा आपका।
1: एक और मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, खाना खाते समय भूख से ज्यादा खा जाते हैं, बार बार दिमाग को समझाने पर भी नियंत्रण नहीं हो पाता, कृपया इस बारे में जानकारी दें। अनिल कालरा, गुरुग्राम।
0: देखिए जैसे स्लीप सेंटर दिमाग में है, ऐसे एपेटाइट सेंटर भी दिमाग में है ना। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उसके अनुसार भी हम लोग अपनी डाइट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतनी डाइट लेनी है या इससे ज़्यादा लेनी है, इससे कम लेनी है। कई बार फूड फैट्स भी होते हैं कि कुछ चलता है कि इतना ही खाना खाना चाहिए, तो चाहे व्यक्ति का 5 फुट 2 इंच का हो या 6 फुट का हो, तो सब सोचते हैं हमें उतना ही खाना चाहिए। तो डाइट तो आपके शरीर की संरचना के अनुसार है। अगर लगता है कि एपेटाइट से ज़्यादा खा रहे हैं या उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो जैसे मैंने पहले कहा, एक मनोचिकित्सक से संपर्क करें। मनोचिकित्सक नहीं है तो एक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है कोई और वजह हो, जैसे डायबिटीज़ है, शुरुआत में पॉलीडिप्स या पॉलीफेजिया होते हैं, पानी भी ज़्यादा पी रहे होते हैं और खाना भी ज़्यादा खा रहे होते हैं, और पता भी होता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाते। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ दिमाग से ही रिलेटेड है, कई शरीर की बीमारियों में भी एपेटाइट में बदलाव नज़र आते हैं। अगर समझ रहे हैं बदलाव है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
1: एक और मैसेज हमारे पास लिखते हैं, डॉक्टर साहब नमस्ते, मैम नमस्ते, मेरी वाइफ की एज 66 है, उसको ऐसा लगता है गंदा गंदा, वो बार बार हाथ धोती है, कोई सही इलाज बताएं, राजरानी रोहिणी दिल्ली।
0: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मरीज तो हमने नहीं देखा लेकिन ऐसा लगता है कि आपके मरीज को शायद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी हो, क्योंकि उसमें ये लक्षण ज़्यादातर होते हैं। कुछ और बीमारियों में भी होते हैं लेकिन OCD का ज़्यादा चांस लग रहा है। तो आप किसी मनोचिकित्सक से मिलें। रोहिणी में रहते हैं तो रोहिणी में सरकारी अस्पताल में भी मनोचिकित्सक के विभाग हैं, और किसी से भी मिलके जो डॉक्टर इलाज बताएं उस पर अमल ज़रूर करना है। कई बार मानसिक रोगों में इलाज लंबा होता है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, 1 हफ्ता खानी है, 5 दिन खानी है, तो महीनों में इलाज होता है। तो आप सब्र रखें, जितने दिन डॉक्टर साहब इलाज दें वो इलाज लेना है। इलाज के 2 चरण हैं, एक्यूट फेज जब तक बीमारी ठीक नहीं होती, और मेंटेनेंस फेज जिसमें हम प्रयास करते हैं कि बीमारी वापस पलट के ना आए। तो थोड़ा सब्र रख के रेगुलर इलाज कराएंगे तो इलाज संभव है।
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, एज इज 46 ईयर्स, ममता फ्रॉम दिल्ली, सिंस चाइल्डहुड आई हैव हैड अ हैबिट ऑफ पीलिंग द टॉप लेयर ऑफ स्किन अराउंड माई फिंगर्स, इज दिस नॉर्मल, आई हैव नोटिस दैट आई समटाइम्स डू इट व्हाइल आई एम ओवर थिंकिंग, कुड देयर बी अ कनेक्शन बिटवीन द टू।
0: हाँ, ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, आप भी मनोचिकित्सक से मिलें और इसका इलाज कराएं। इसका इलाज भी संभव है ना, लेकिन कई बार पता ही नहीं होता कि ये बीमारी है या आदत है, ये आदत है या टेंशन में हम अपने आप ऐसे ही कर लेते हैं या नॉर्मल है।
1: नेल बाइटिंग
0: होती है, कई बार लोग अपने बाल भी खींच खींच के निकालना शुरू कर देते हैं, तो ये सब बीमारी में ही आता है, विभिन्न तरीके की मानसिक रोग हैं। तो मनोचिकित्सक से मिलें और इलाज कराएं।
1: तो लेकिन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे लगे, मतलब जब ये हैबिट्स कर रहे हैं या लगे हम सोच रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कई बार लोगों को खुद ही नहीं पता चलता।
0: बीमारी ही है, डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो बताया कि ये भ्रांति है, मिथ है, लोग सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है या हम टेंशन में कर रहे हैं, एक्चुअली बीमारी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बीमारी ही होती है।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये है इंदर सिंह फ्रॉम रोहिणी, सर व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हेडेक, प्लीज एक्सप्लेन।
2: हेडेक के देखिए, जैसे मैंने बोला हेडेक के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे आपका माइग्रेन होता है, टेंशन होती है आपको, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में आपको हेडेक होता है, ब्रेन ट्यूमर्स में हेडेक होता है। अगर मैं आपको लिस्ट गिनाने चाहूँगा तो शायद ये प्रोग्राम पूरा यहीं समाप्त हो जाएगा। तो कॉजेज बताना तो बहुत अलग अलग है कि, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर हेडेक होता है, बार बार होता है, तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करिए आप।
1: जैसे कि आजकल के टाइम में डिजिटल स्क्रीन, सोशल मीडिया और लगातार बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, बड़े भी लगे रहते हैं, तो उसका हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है?
0: उसका हमारे ब्रेन पे बहुत ख़राब असर पड़ता है, और कई विदेशों में तो उन्होंने स्क्रीन टाइम कम कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और सोशल मीडिया बच्चों के लिए तो प्रतिबंधित भी कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया का और स्क्रीन का बुरा असर पड़ रहा है ना। तो भारत में अभी तक ऐसे कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन स्कूलों में, कॉलेजेस में डॉक्टर भी सभी यही राय देते हैं कि आप इसका ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करें, है ना, इसका दुरुपयोग ना करें। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आंखें खराब होती हैं तो सभी समझ सकते हैं, लेकिन ब्रेन पे भी असर पड़ता है, याददाश्त पे असर पड़ता है, अटेंशन स्पैन पे असर पड़ता है, मेमोरी पे असर पड़ता है, है ना, कोपिंग स्किल्स कम है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी विदेशों में हर पीढ़ी के साथ जो IQ है, हमने बात की थी ना इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धिमत्ता के एक आंकलन की, हर पीढ़ी के साथ IQ बढ़ी है। ये पहली बार है कि इस बार IQ के कुछ प्रतिशत घटी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये खुद एनालिसिस नहीं कर रहे, खुद सोच नहीं रहे, पकी पकाई खिचड़ी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, तो वो भी एक मतलब एक नेगेटिव दुष्प्रभाव है कि आप सोचने समझने की शक्ति भी कम किए जा रहे हैं। तो उसका असर ये नहीं कि अभी हो रहा है, उसका असर आगे तक होगा। तो ठीक है, एक नई चीज़ आई, लेकिन वही सेब और चाकू वाली बात है कि चाहे हाथ काट लें चाहे सेब काट लें, इसी तरह सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम है, उसके बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए करते हैं, चाहे अपने मित्रों से संपर्क में रहने के लिए करते हैं, लेकिन दुष्प्रभाव भी हैं। तो अगर ज़्यादा यूज़ है और नहीं छोड़ पा रहे, मनोचिकित्सक से संपर्क करें, हम उसमें भी मदद करते हैं।
1: तो ऐसे में बच्चों में जो मोबाइल पे लगे रहते हैं, जैसे आपने कहा IQ लेवल वगैरह कम हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों की मेमोरी इंक्रीज करने के लिए उनको किस तरह की एक्टिविटीज करानी चाहिए?
0: पहले हमें मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो छुड़वाना पड़ेगा। ऐसा नहीं IQ बड़े पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, एक व्यक्ति पे नहीं है, ये एक पीढ़ी पे बात कही थी कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बच्चे में जो विकार है उस विकार के अनुसार फिर हम गाइड करते हैं। और अभी हमने हमारे अस्पताल में ही देखा कि इंटरनेट और AI के प्रयोग से एक 13-14 साल का लड़का, उसको साइकोसिस तक हो गया, जो बहुत गंभीर बीमारी है। तो इतना सुरक्षित नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणाम हैं। तो लिमिट में अपनी सुपरविजन में बच्चों को देना चाहिए, और जो बड़े हैं उनको भी लिमिट में इस्तेमाल करेंगे तो सुखी रहेंगे।
1: डॉक्टर राहुल, जैसे कि आप न्यूरो सर्जन हैं, तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं कि जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है?
2: ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है आपका, बट यस, आपके सर में चोट होती है, आपको स्ट्रोक होता है, आपको ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, बहुत तरह के विकार होते हैं आपके उसमें, जिसमें ऐसा नहीं है कि हर एक में सर्जरी ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ें दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, बट उसके लिए फिर मैं कहूँगा डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, वही आपको बताएगा कि सर्जरी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। मतलब खुद से, जैसे मैडम ने बताया सोशल मीडिया, तो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो भी आप देखते हैं, कृपया उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अगर 70% इन्फॉर्मेशन ठीक है तो 30% गलत भी है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपके शरीर में उसके दुष्प्रभाव आए, तो प्लीज़ पहले वेरीफाई करिए तभी फॉलो करिए।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, मैं ललित भाटिया, 67 ईयर्स, अहमदाबाद से। मैंने 2 बार कॉमा फेस किया है और पापा को भी ट्यूमर था। कोई सिम्टम्स नहीं है, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना डायबिटीज़ है ना BP है।
0: तो ललित जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप 2 बार कोमा से बाहर आए हैं। कोमा किस वजह से हुआ ये तो आपने नहीं बताया, लेकिन आप कोमा से बाहर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पिताजी को ट्यूमर था, तो इस जानकारी को समझते हुए आप अपना एनुअल चेकअप ज़रूर कराइए। अगर आपको ब्रेन से संबंधित या कोई और भी विकार लगता है तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लीजिए। और जो हमने लाइफस्टाइल फैक्टर्स बताए हैं, एक्टिविटी का, कि अपना एक्सरसाइज करें, योग करें, ध्यान करें, सही पौष्टिक बैलेंस डाइट खाएं, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर फिर भी कुछ आपको शंका होती है तो डॉक्टरी परामर्श से बचे ना, है ना। कई बार हम सोचते हैं हम डॉक्टरी परामर्श करेंगे ना, डॉक्टर कुछ बता देंगे, लेकिन कुछ होता है तभी बताते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, वो तो सबसे सुखद संदेश है ना, कि कुछ नहीं है, तो शंका को अपने मन में ना रखें। एनुअल चेकअप तो हर एक ने कराना चाहिए, नहीं कराते हैं तो लक्षण के अनुसार तो जरूर कराएं।
2: यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा आपको कि जैसे मैडम ने बोला, आप इस बात का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा कि मेरे फादर को ट्यूमर था तो मुझे भी होगा। ऐसे अमूमन ट्यूमर्स बहुत ही कम होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मेरे फादर को ट्यूमर था, प्लीज स्ट्रेस मत लीजिएगा, इससे और दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे बीपी वगैरह बढ़ सकता है आपका। तो ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना है कि फादर को ट्यूमर है तो मुझे भी हो सकता है।
0: और इस बात का भी स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे दो दो बार कोमा हुआ, बल्कि इस बात का आपको खुशी होनी चाहिए कि आप कोमा से दो बार बाहर आए। तो कई बार हमारा जो दृष्टिकोण है वही हमें स्ट्रेस देता है कि हमें ये हो गया, लेकिन हम उससे ठीक भी तो हुए ना। तो हम अगर पॉजिटिव देखेंगे तो सोच पॉजिटिव रहेगी तो स्ट्रेस कम रहेगा।
1: यानी नेगेटिव साइड को हम साइड में रख के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें और अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें।
0: हाँ, गिलास आधा भरा है ये सोचें, गिलास आधा खाली है वो ना सोचें।
1: जी, एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम शाहीन है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे ये पूछना है कि मेरा भांजा है, उसकी उम्र 15 साल है, वो स्कूल जाता है पर उसे कुछ याद नहीं रहता है, ना कुछ काम और ना ही वो स्कूल का कुछ याद कर पाता है, तो इसका कोई इलाज है या ये कोई बीमारी है, प्लीज़ बताएं।
0: इनको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए और शायद अगर मनोचिकित्सक ज़रूरी समझेंगे तो बच्चे की इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कराएंगे, तो इनको ज़रूर मिलना चाहिए।
1: तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्दी ब्रेन के लिए, तो हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी हैबिट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं?
2: हेल्दी हैबिट्स तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि आपका ब्रेन 4 से 5 साल में डेवलप हो जाता है जब तक आप होते हैं, तो वह एक आपका आइडियल टाइम होता है जिसमें आपको बच्चे के खान पान इन सब पे ध्यान देना होता है। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स पर आ जाते हैं, हम वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चे भी आजकल की डेट में जैसे जैसे बड़े होते हैं उसको फास्ट फूड्स को लेते हैं, तो वही एक पीक टाइम है जिसमें आपको बच्चे के डाइट पे ध्यान देना है। और जैसे फिर मैं दूसरी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हेल्दी ब्रेन इस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे मैंने पहले कहा था, तो कृपया जब भी आप गाड़ी चलाएं हेलमेट ज़रूर पहने आप, क्योंकि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और भगवान ने ना चाहा और आपका एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो हेल्दी ब्रेन तो नहीं रहेगा आपका।
0: इसमें मैं एक बात जोड़ूं कि अमूमन जो बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, वो शायद पहन लेते हैं हेलमेट, लेकिन जो पिलियन पे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं वो नहीं पहनती। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह शायद लॉ ना हो लेकिन ब्रेन तो आपका अपना है ना, तो आप कानून का इंतज़ार ना करें, अपने ब्रेन की सुरक्षा रखें। एक और बात मैं यहाँ जोड़ती हूँ कि नशा किसी भी तरीके का दिमाग को हिट करता है, तो नशे से हम जितना दूर रहेंगे उतना सही है। और नशे का जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उस पर बहुत ज़्यादा असर है, हम देख रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं, और लड़कों में नहीं लड़कियों में भी नशे के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये कोई स्मार्टनेस का द्योतक नहीं है कि भाई हम बहुत स्मार्ट हैं तो हम नशा करते हैं, ये तो क्या कहूँ, एडवर्टाइजिंग है कि लगता है कि हाँ बहुत स्मार्ट है। ये नशीले पदार्थ ब्रेन को अंदर से खोखला कर देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें।
1: और योग और मेडिटेशन, वो हेल्दी ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी है?
0: देखिए, इतने मैं क्या कहूँ कि इतने दशकों से नहीं, इतनी सेंचुरी से, हज़ारों साल से योग हमारी धरती पर, हमें सौभाग्य हमें मिला है, लेकिन हम लोग उस पर अमल कम करते हैं। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज़ करें, तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि कुछ आप अवधि बांध लें और फिर कंसिस्टेंटली रोज़ करें। एक दिन 1 घंटा कर लिया और उसके बाद 6 महीने नहीं किया, उसका कोई लाभ नहीं। जो मेडिटेशन है ये उतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन चंचल होता है ना, तो मन भटकता है। तो मेडिटेशन किसी से सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा मन स्थिर रखना और बिना किसी लक्ष्य के स्थिर रखना, सिर्फ बैठे बैठे स्थिर रखना, इसके लिए अभ्यास लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा जा सकता, सभी सीख सकते हैं। थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए समय निकालें और प्रयास करें तो सब संभव है।
1: और किस तरह की डाइट या लाइफस्टाइल हेल्दी ब्रेन के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए?
2: देखिए, डाइट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो भारतीय खान पान है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो अपने आप में संपूर्ण है, जो आपको हर चीज़ देता है। आपको ब्रेन के जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जो आपको ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, वो सब कुछ आपके डाइट में होते हैं। बट जैसे कि हमने देखा है आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड पे जा रहे हैं, तो वो फिर आपको ब्रेन के डेवलपमेंट में सही नहीं रहता है आपको। तो अखरोट मैंने पहले भी बताया आपको, दिमाग की शेप का होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हरी सब्जियां जो होती हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। तो उसको फॉलो करिए आप, अच्छा भारतीय खान पान पर ध्यान दीजिए।
1: तो जैसे कि जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप श्रोताओं को वर्ल्ड ब्रेन डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनका ब्रेन हेल्दी रहे।
0: देखिए, कहते हैं कि ब्रेन कैपिटल इज ह्यूमन कैपिटल, जो मस्तिष्क की पूंजी है वही जीवन की, इंसान की पूंजी है। तो मस्तिष्क का ख्याल रखें, आगे बढ़ें।
1: और डॉक्टर राहुल, आप क्या कहेंगे?
2: मैं तो यही कहूंगा कि जैसे आप अपने ब्रेन जो है आपके शरीर रूपी गाड़ी का एक इंजन है, जैसे आप अपने इंजन में बराबर से आप ऑयल डलवाते हैं, उसको आप ठीक रखने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी गाड़ी प्रॉपरली चले, ऐसे ही आप अपने ब्रेन पे भी ध्यान दीजिए, उसका डेवलपमेंट, उसमें कोई आघात ना लगे, उसमें कुछ विकार डेवलप ना हो, तो आप हमेशा अच्छा फील करेंगे एंड लास्टली स्ट्रेस भी कम होगा आपको।
1: तो दोस्तों, आज की चर्चा से यही संदेश निकल कर आता है कि स्वस्थ मस्तिष्क केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की ताकत है। समय पर पहचान, सही जानकारी, स्वस्थ जीवन शैली और सभी तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, यही है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल का वास्तविक उद्देश्य। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर मीना चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, और साथ में है डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव है। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश भर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि

राजीव चौक मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय संबंधों के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। ईरान पर अमरीका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा ये हमले हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
0: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष।

0: अरे राहुल बेटा।
1: जी पापा जी।
0: इधर आओ जरा।
2: और हाँ साक्षी, तुम भी आओ, कुछ बात करनी है तुम दोनों से।
1: क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना?
2: हाँ सब ठीक है बेटा, बस एक बात समझानी थी तुम दोनों को जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखाते।
0: देखो बेटे, दुनिया में लड़के बहुत मिलेंगे, पर अच्छा बेटा और अच्छा इंसान बनना तुम्हारे हाथ में है, और उसकी सबसे बड़ी पहचान है तुम एक लड़की से कैसे पेश आते हो।
2: और बेटा याद रखो, हर लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जैसे तुम अपनी बहन की इज्जत करते हो ना, वैसे ही।
3: तीन बातें गांठ बांध बेटा। पहली बात इज्जत, लड़की से बात करो तो आंखों में आंखें डालकर साफ लहजे में करना, कमेंट पास करना, सीटी बजाना, पीछे से हंसना, ये मर्दानगी नहीं है बेटा, ये कमजोरी है। दूसरी बात हद, मतलब दोस्ती करो तो दोस्ती की तरह, प्यार करो तो इज्जत के साथ। ना का मतलब ना होता है बेटा, उसे बार बार मनाना, फोर्स करना, गुस्सा करना, ये प्यार नहीं है।
2: और तीसरी मदद, बस में, कॉलेज में, ऑफिस में अगर कोई लड़की दिक्कत में है तो मदद करो बेटा, वो मत बनो जो तमाशा देखे, बल्कि बेटा वो बनो जिस पर एक पिता अपनी बेटी को भरोसा करके उसके साथ भेज दे।

0: और सुनो, सोशल मीडिया पर भी वही इज्जत करना। किसी की फोटो पर गलत कमेंट, नंबर मांगना, पीछा करना, ये सब करके तुम सिर्फ लड़की को नहीं अपने घर की परवरिश को बदनाम करते हो।
1: बेटा, एक दिन तुम भी किसी के दामाद बनोगे, किसी की बेटी के पिता बनोगे, तो आज जैसा व्यवहार करोगे कल वैसा ही तुम्हारे साथ होगा।
2: जी पापा जी।
0: शाबाश। मर्द वो नहीं जो डराए, मर्द वो है जो सुकून दे।
3: जी हाँ, मर्द वही है जो दूसरों को इज्जत दे, सम्मान दे और साथ ही साथ सुरक्षा का भाव दे, और यही दस्तूर भी है। इसीलिए अगर बेटों का व्यवहार अच्छा होगा तो समाज अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, संस्कारी बेटे के साथ साथ परिवार का नाम भी रोशन होता है, और ऐसे बेटे सबकी नजर में बन जाते हैं एक।

जी हाँ, अपने व्यवहार से ही इंसान हीरो बनता है, लेकिन उसकी जरा सी लापरवाही और उसका असभ्य व्यवहार ही उसको हीरो से जीरो बनने में देर नहीं लगाते। इसीलिए हर माता पिता का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बेटों को सही सीख दे, सही तरीके से उनका लालन पालन करे, ताकि उनका व्यवहार लड़कियों और महिलाओं के प्रति सभ्य और शालीनता भरा हो। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से और जानते हैं कि कैसे माता पिता अपने बेटों का लालन पालन करें, ताकि वो गर्व से अपने बेटे के लिए कह सकें कि हाँ, यही है हमारा राज दुलारा।

0: विनीता जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे देखिए इतना बिजी है कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिलता उसको, और इसीलिए वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी या तो मेड के हाथों में सौंप देते हैं या किसी क्रैच में बच्चा टाइम व्यतीत करता है। कहने का मतलब यही है कि माता पिता खुद बच्चे की परवरिश ना करके परायों पर थोप रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं?
1: परमेश्वर ने हमें बच्चा दिया है, उसके लालन पालन की जिम्मेवारी हमारी है
0: जी,
1: क्योंकि बच्चे ज्यादा अपने आप को व्यक्त नहीं करते, वो ज्यादा बोल नहीं पाते, तो उनके दिल के अंदर जो चोट लगती है, उनके जो छोटे नाजुक दिमागों में दिल में चोट लगती है, वो चोट बहुत गहरा जख्म बन जाती है।
0: ओके, तो माता पिता ऐसा क्या तरीका अपनाएं जिससे वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छे माँ बाप साबित हो सके?
1: अच्छे माँ बाप बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारा विवाहित जीवन अच्छा हो
0: जी।
1: अगर हम विवाहित हैं और हम खुश हैं, सुखी हैं, चाहे थोड़ा हो, थोड़े में संतोष है हमारे पास, जरूरी है कि ऐसे वातावरण में ही बच्चे को लाया जाए
0: जी।
1: नहीं तो बच्चे को जन्म तो दे दिया लेकिन फिर या उसको सेवादार पर छोड़ दिया या खुद अलग हो गए, तो ये सही नहीं है। किसी भी बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने का अधिकार माता पिता को नहीं है। जब ईश्वर हमें माता पिता बनने का अधिकार देता है तो ढेर सारी जिम्मेवारियां हमारी होती हैं, और वो जिम्मेवारियां तभी खत्म होती हैं जब हमारे जीवन का अंत

0: होता है।
1: जी जी।
0: तो इसलिए जब हम माता पिता बनते हैं तो सोच समझ के अपनी जिम्मेवारियों को होशो हवास में समझ कर ही ये कदम उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल, सोच समझ कर उठाए गए कदम न सिर्फ खुशियां लाते हैं बल्कि एक सुंदर परिवार भी बनाते हैं, जहां खुशियों की किलकारी के साथ साथ एक अपनापन और आपसी मधुर रिश्ता भी देखने को मिलता है। वनिता जी, आपसे करेंगे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले फिलहाल सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: विनीता जी, इस खूबसूरत गीत को सुनते सुनते मेरे जहन में कई परिवारों की तस्वीर सामने आ गई, जहां बच्चों के सामने रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, या फिर कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहां बच्चों के सामने बैठकर शराब पी जाती है।
1: ऐसे वातावरण में जब हम बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं बिना किसी अनुशासन के, तो हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं बच्चे से? हम बच्चे को निर्देश तो देते हैं
0: जी,
1: बच्चे को दिशा तो दिखाते हैं, लेकिन बच्चा तो हमारे लवों को नहीं सुन रहा, हम क्या कह रहे हैं वो नहीं सुन रहा।
0: बिल्कुल,
1: वो करेगा जो वो देखता है या देखती है।
0: ओके,
1: जी हाँ, हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। अगर हम तहजीब से बात करते हैं, अगर हम प्रेम पूर्वक अपने परिवार में रहते हैं, अगर हम अपने मन मुटाव प्यार और शांति से सुलझाते हैं, एक शांति का वातावरण अपने परिवार में रखते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम जैसे भी बात करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, वो बच्चा हमें बहुत गौर से देख रहा है
0: जी,
1: और वो वही करेगा या करेगी जो उसके माता पिता करते हैं। अगर माता पिता अच्छे हैं, माता पिता अनुशासन रखते हैं, माता पिता शांति प्रिय हैं, माता पिता शिक्षा पे विश्वास रखते हैं, माता पिता लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, सहायता करने में विश्वास रखते हैं, किसी को हेल्पिंग हैंड देने में विश्वास रखते हैं, अगर माता पिता घर में प्रार्थना का वातावरण रखते हैं, तो ठीक वैसे ही बच्चा भी करेगा, बच्ची भी करेगी, क्योंकि वो हमें देखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम माता पिता की भूमिका में अपने आप को देखते हैं या हैं, तो हमको इस जिम्मेवारी का पूरा एहसास होना है।
0: बिल्कुल सही कहा विनीता जी आपने। जब तक इस बात का एहसास हमको नहीं होगा कि हमारे कांधों पर उन मासूम बच्चों का भविष्य टिका है, हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे। सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जो हमसे बुजुर्ग हैं, उनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं, उनकी अच्छाइयों से हम सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो पहले पीढ़ी गई है उनसे हम सीख सकते हैं, हमारे माता पिता ने क्या गलतियां करी या क्या अच्छाइयां करी उनसे हम सीख सकते हैं, किताबों से, सलाह लेकर, काउंसलर्स से।
0: okay.
1: क्योंकि हर एक बच्चा फर्क होता है, तो किस तरीके से हम बच्चों का लालन पालन करते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। प्रिय मित्रों, प्रिय श्रोताओं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे भविष्य का, चाहे वो देश का भविष्य हो, समाज का भविष्य हो, माता पिता के हाथों में दिया है। हम सोचते हैं कि टीचर्स सुधारेंगे, लेकिन अध्यापकों के पास तो बच्चा केवल 6 घंटे होता है
0: जी।
1: बाकी 18 घंटे तो वो माता पिता के साथ घर में होता है। अब माता पिता घर में प्रेशर कुकर का वातावरण रखते हैं या प्रेम शांति का वातावरण रखते हैं, ये माता पिता के हाथ में है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि माता पिता बात ही नहीं करते बच्चों से, ना एक दूसरे से बात करते हैं, ना बच्चों से बात करते हैं, और करते भी हैं तो लड़ाई मार झगड़े का एक वातावरण होता है। तो प्रिय श्रोता, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझें, क्योंकि देश का भविष्य जो इस छोटे छोटे बच्चों की मुट्ठी में है, उसको सही दिशा दिखाना हम माता पिता का पहला कर्तव्य है।
0: जी हाँ, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से और सही दिशा में निभाने से न सिर्फ बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, बल्कि हमारा देश भी तरक्की की डगर पर आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, या मुश्किलों के तूफान में आप घिरे हुए हैं, तो आप हमारे काउंसलर से जरूर बात करें। हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात करने के लिए हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। आप अपनी बात को फोन पर रिकॉर्ड करके भी हमको भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं।

0: के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम का वो खास प्रोग्राम जो कि डेडिकेटेड है हमारे यंग स्टूडेंट्स को और कैंपस लाइफ को। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। ये प्रोग्राम आपके लिए आता है हर बुधवार की शाम को 4 से 5 बजे के बीच में, और इसमें हर बार हम आपको ले चलते हैं नए कॉलेजेस में, हर बार आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक नए कोने से रूबरू कराते हैं। पिछले कुछ हफ्ते हमने सुना कि किस तरह से एडमिशन्स जो हैं, वेल मिशन एडमिशन को अगर आपने पार करना है तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपने इकट्ठा की, और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उस जानकारी को हमने आप तक पहुंचाया। हमारी सहयोगी जो है वो जाती हैं कॉलेजेस में, मिलते हैं वो लोग हमारे टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, प्रिंसिपल से, और आपके लिए ये तमाम जानकारी समेट कर लेकर आते हैं, और साथ ही लेकर आते हैं एक झलक उस कैंपस लाइफ की जिससे हम हमेशा जुड़े रहते हैं। एक बार फिर से हमारी सहयोगी जो है ऋचा वर्मा वो पहुंची हैं अदिति महाविद्यालय, और वहां पे की हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत। तो आइए जानते हैं उनसे कि आज उन्होंने आखिर उस कॉलेज के किस किस एंगल को कैप्चर किया है, वहां से क्या क्या जानकारी इकट्ठा की है, और साथ ही साथ उन्होंने वहां पे किन किन लोगों से की है बातचीत।
1: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आज अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में मैं आई हूँ अदिति महाविद्यालय। यहाँ की एक टीचर मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं।
2: हेलो ऋचा जी, मैं प्रोफेसर मंजू रानी और मैं अदिति महाविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर।
1: मैम, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपने पसंदीदा कोर्स को लेके बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, उन्हें उसी कोर्स में एडमिशन लेना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्हें उस कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाता तो आपकी सलाह उन्हें क्या रहती है?
2: मेरी सलाह यही है कि यदि उनको एडमिशन नहीं मिलता है अपने पसंदीदा कोर्स में तो वो अपने साल को खराब ना करें और वो किसी ऐसे कोर्स को चूज करें जो आगे और उनके कैरियर को बेहतरीन बना सकते हैं, ईयर खराब ना करें वो अपना।
1: मैम, आज के समय में जब स्टूडेंट कोई कोर्स को चूज करता है तो वो अपनी रुचि को महत्व दे या फिर करियर में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस बात को लेकर अपना करियर चूज करे, अपना कोर्स चूज करे?
2: नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी यदि रुचि के साथ उसको अपना करियर भी बनाने को मिल जाए, या इन केस अगर रुचि का पसंदीदा उसको नहीं मिलता है अपना कोर्स तो वो कोई ना कोई ऐसा डिसिप्लिन अपना चूज कर ले जिसमें वो आगे जाके अपने रुचि को भी ले सकता है और अपना करियर भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पर अपनी रुचि को लेकर डंप करके बैठ जाएगा, हो सकता है वो आगे, जैसे भाषा कहते हैं बेहतर नीर होता है, तो आगे जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाता है।
1: आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा एक बहुत बड़ी संख्या में। मैम, आपके अनुसार एक आदर्श जो स्टूडेंट है उसकी परिभाषा क्या होती है?
2: देखिए, बहुत बच्चे आए, बहुत बच्चे गए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे दिल दिमाग पर छाप छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं, वैसे तो सभी बच्चों को हम चाहते हैं कि वो धैर्यशील हों, परिश्रमी हों, लगनशील हों, और सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी टीचर के साथ, जो भी उनकी टीचर है उनके साथ उनकी एक बॉन्डिंग हो, वो अपने आचार विचारों का उनके साथ आदान प्रदान करना सीखें ताकि वो एक दूसरे के सहायक हों। क्योंकि परिवार के बाद बच्चा जब बाहर निकलता है, बड़े कैंपस में जब वो एंटर करता है तो वहाँ पर उनको प्रोफेसर्स मिलते हैं जो कि एक स्वच्छंद रूप में भी होते हैं और एक उनको स्किल के रूप में भी एक अच्छे टीचर के रूप में मिलते हैं, जो उनको ज्ञान वर्धन के साथ साथ चरित्र भी सिखाते हैं, संस्कार भी सिखाते हैं और धैर्य भी सिखाते हैं। तो बच्चों में ये धैर्य, लग्न, श्रमशीलता होनी बहुत आवश्यक।
1: मैम, अगर आप स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हैं तो जब आपने अपनी पढ़ाई की होगी उस वक्त एक अलग ही जमाना होगा, जो आजकल का जमाना है वो बिल्कुल ही अलग है। मैम, अगर ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक दिन के लिए आपको स्टूडेंट बनने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?

0: सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि काश हमारे टाइम में भी मोबाइल और इंटरनेट होता, क्योंकि उस समय हमने जो पढ़ाइयाँ की हैं वो किताबों के थ्रू की हैं। एक बुक नहीं मिली तो दूसरी बुक, एक लाइब्रेरी में नहीं मिली तो हम दूसरी लाइब्रेरी में गए, तो वो एक हमारा ऐसा परिश्रम था। आज के जमाने में जाना चाहूँ अपने टाइम में तो मोबाइल या इंटरनेट एक बहुत अच्छा साधन है।
1: क्या बात कही है मैम आपने, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाती रहें और आपके स्टूडेंट्स बहुत ग्रो करें, हमारी यही शुभकामनाएं। हमें इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू रीता जी।
1: बात करते हैं एक और टीचर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो के कार्यक्रम अल्फा जैन कैंपस कॉलिंग में।
2: थैंक यू। मैं डॉक्टर मनीष वत्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अदिति महाविद्यालय।
1: कॉलेज में कौन कौन से स्पोर्ट्स इस समय अवेलेबल हैं?
2: इस समय हम 12 गेम्स करवाते हैं अपने कॉलेज में, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, योगा, टाइक्वांडो, वॉलीबॉल।
1: और सर कॉलेज की अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं गेम्स में?
2: अचीवमेंट्स देखी जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेले हैं, कॉमनवेल्थ भी खेले हैं, एशियन गेम्स भी खेले हैं, और उसके साथ साथ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तो हर साल हमारा पार्टिसिपेशन रहता है, नेशनल में भी पार्टिसिपेशन रहता है, जो स्टेट्स होते हैं, इंटर कॉलेजिएट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं।
1: सर जब बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए एक अच्छे कोच का होना बहुत जरूरी है, इस बात में कितनी सच्चाई है?
2: बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, वैसे ही कॉलेज में या स्कूल में आने के बाद अगर उसे सही ट्रेनिंग या कोचिंग मिल जाए तो वो और भी एक्सेल कर सकता है बच्चा।
1: तो आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि अदिति का नाम आप जैसे लोग जरूर चमकाएंगे।
2: थैंक यू।
3: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन जो है। इसमें आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची अदिति महाविद्यालय और वहां पे उन्होंने की किससे, अभी आपने सुनी उनकी बातचीत टीचर्स से जो उन्होंने वहां के टीचर्स से की। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा कि टीचर मैम ने बोला कि बच्चे जो है छाप छोड़ जाते हैं, तो वेल सिर्फ बच्चे ही नहीं होते, टीचर्स भी जो है ना उनकी छाप हर छात्र के मन में जो है ना वो छूटती है। और कहते हैं एक टीचर जो होता है उसका जो असर होता है वो पूरी जिंदगी रहता है, क्योंकि टीचर्स हमें बहुत सारी चीजें जो है ना सिखा जाते हैं और अक्सर जो है ना एक कहना चाहिए कि दुनिया में बाहर जाके एक दुनिया से डील करने से पहले जो सबसे आखिरी चीजें हम सीखते हैं वो हम अपने टीचर्स से ही सीखते हैं। और कॉलेज करता है ये वो काम जब आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ आपको तैयार करती है आपकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है उसी कैंपस लाइफ को, नाम है इसका अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आप सभी के साथ। आज हम पहुंचे कहां पे? अदिति महाविद्यालय। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची वहां पे। उन्होंने की वहां की टीचर्स से बातचीत और वहां के स्टूडेंट से की उन्होंने बातचीत। स्टूडेंट्स के पास बहुत देखा जाए तो एक कहना चाहिए खजाना होता है टैलेंट का, उसके साथ साथ उनके पास एक खजाना और होता है, वो होता है उनके सपनों का। और उसके लिए जो आत्मविश्वास उन्हें चाहिए होता है या फिर जो भी उस उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते उन्हें चाहिए होते हैं वो देने का काम करते हैं हमारे कॉलेजेस, हमारे ये कैंपसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदिति महाविद्यालय पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा और आइए जानते हैं कि वहां पे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने क्या बातचीत की।
3: मेरा नाम है ऋचा और अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ अदिति महाविद्यालय और इस कॉलेज के स्टूडेंट से हम बातचीत कर रहे हैं और एक रैपिड फायर खेलते हैं। कौन है हमारे साथ पहले ये जान लेते हैं। क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम गुंजन है, मैं अदिति महाविद्यालय थर्ड ईयर बी ऑनर्स सोशल वर्क की छात्रा हूँ।
3: गुंजन एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। ओके, टी और कॉफी?
4: टी।
3: बुक्स या मूवीज?
4: मूवीज।
3: क्रिकेट या फुटबॉल?
4: क्रिकेट।
3: सुबह जल्दी उठना या देर रात तक जगना?
4: सुबह जल्दी उठना।
3: ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग?
4: ऑफलाइन शॉपिंग।
3: अच्छा, मीठा या नमकीन?
4: नमकीन।
3: बीचेस और माउंटेन?
4: माउंटेन्स।
3: तो आपकी लाइफ पर अगर एक मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा?
4: चिड़िया को उड़ने दो।
3: और इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा हमें?
4: इसमें एक स्ट्रगल देखने को मिलेगा कि अगर किसी को अभिनेता या अभिनेत्री बनना होता है तो उसको सोसाइटी के थ्रू क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और उस चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करता है।
3: आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हैं?
4: मैं अभिनेत्री ही बनना चाहती हूँ।
3: क्या आपने अपनी लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं?
4: हाँ, मैंने अक्सर चैलेंजेस फेस करे हैं कि अभिनेत्री क्यों बनना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब में कुछ नहीं रखा है। बट मेरा मानना ये जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो शायद वो हमारी सक्सेस की ओर एक पंख होता है।
3: अच्छा, कौन सी अभिनेत्री आपको बहुत इंस्पायर करती है?
4: आलिया भट्ट की अगर मैं मूवीज देखती हूँ तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। काफी सारी जैसे हाईवे मूवी है, वो किस तरह से फ्रीडम चाहती है अपनी जिंदगी में, किस तरह से दुनिया का कोना कोना घूमना चाहती है। आलिया भट्ट की काफी सारी मूवीज इस तरह से इंस्पायर करती है। और अगर मैं आलिया भट्ट का कोई भी कैरेक्टर देखूं, गंगूबाई हो गया या फिर हाईवे मूवीज में हो गया, तो वो उसको बखूबी तरीके से निभाती है।
3: बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू सो मच।
5: मेरा नाम कशिश है, मैं हिंदी जर्नलिज्म थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ अदिति महाविद्यालय में।
3: आप जर्नलिज्म कर रही हैं तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं?
5: जो हमारा कोर्स है इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। पीआर है हमारा, एंकरिंग का है, जो कि सबको लगता है अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो तो आप एक एंकर ही बनोगे। बट मैं उन सबसे थोड़ा सा हटके करना चाहती हूँ, मैं एज अ आरजे वर्क करना चाहती हूँ।
3: क्या बात है, आप रेडियो जॉकी बनना चाहती हैं। तो देखिए, एक मौका तो आपको मिल ही गया है कि अब आपकी आवाज जो है वो हर कोई सुनेगा। आज आप अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में हैं।
5: हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। मैं हूं आपकी होस्ट कशिश। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 9868107070 पर। थैंक यू सो मच।
3: बहुत अच्छा बोला आपने कशिश, और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज में देखें। और आपको पता है आकाशवाणी में आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो हमारे लिसनर्स को भी सुनना चाहिए, कि जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आपको रिटन टेस्ट देना होता है, ऑडिशन देना होता है, और उसके बाद आप यहाँ आरजे बन सकते हैं। आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू सो मच मैम।
3: क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम मुस्कान है, मैं अदिति महाविद्यालय की बीए प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ।
3: अच्छा, सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है?
6: सक्सेस का हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग होता है, मेरे लिए भी इसका एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। लाइक इफ आई आस्क टू डिफरेंट पीपल, सो उन सबका अलग अलग मतलब होगा सक्सेस के लिए। किसी का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, किसी के लिए फ्रीडम मिलना, मेरे लिए ये दोनों भी हैं। बट इफ आई टेल यू, सो द मेन मीनिंग ऑफ सक्सेस इज टू मी इज कि मैं खुश रहूं अपनी लाइफ में और जो मेरे आसपास है वो सब भी खुश हो और हेल्दी हो। लाइक दिस इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल टू मी।
3: क्या बात है, यानी कि सक्सेस का मतलब है कि सभी खुश हो और सभी अच्छे से रहे। अच्छा, अगर आज के जो यूथ्स हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेंजीज जो हैं वो हम लोगों से बहुत ही अलग हैं और बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जेंजीज एक्चुअली बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, या आपकी क्या राय है, क्योंकि आप खुद भी एक जेंजी हैं?
5: मैं भी एक जेंजी हूँ, और ऐसा नहीं है कि जेंजीज जो हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं. हर एक अलग अलग जनरेशन का उनका अलग टाइम पीरियड होता है, उनकी अलग अलग सोच होती है. सो जो जेंजीज हैं उनकी सोच जो मिलेनियल्स थे और जो उनसे पहले के लोग थे उन सबसे बिल्कुल अलग है. और इफ़ आई टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है उन सबसे, क्योंकि हर एक टाइम के साथ में चेंज होना पड़ता है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है. तो जेंजीज की जो सोच है वो आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने की और मतलब खुद को प्रायोरिटाइज करने की सोच है उनकी, एंड आई फील दिस इज़ गुड फॉर समवन. ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के प्रेशर में खुद को कुछ ना कुछ बदलें. सो अगर हम खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं किसी और से ऊपर, सो इट इज बेटर. अच्छी बात है कि हम अलग हैं उन लोगों से.
3: थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा.
6: थैंक यू मैम.
7: मेरा नाम दीपांशी है और मैं अदिति महाविद्यालय से BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता की थर्ड ईयर की छात्रा हूँ.
8: अपने आपको अगले 5 साल में आप कहाँ देखती हैं?
7: अगले 5 साल में मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह और एक IAS ऑफिसर की तरह देखती हूँ खुद को.
8: यानी आप UPSC का एग्जाम करना चाहती हैं?
7: हाँ जी बिल्कुल.
8: अच्छा, UPSC के एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है अभी तक आपकी, और आप जो हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इस वक्त इस कार्यक्रम को, जो लिसनर्स, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए?
7: अभी तक जैसे मैंने तैयारी शुरू की है तो मतलब ये कि आपको पूरा उस पे फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा. अगर आप अपना माइंड डाइवर्ट करते तो आप नहीं कर पाते. एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है. और सिर्फ ये नहीं कि आप लोग वीडियोस देख लें या फिर कुछ, आपको खुद से भी बुक रीडिंग करनी पड़ती है उसके बाद ही. और जैसे भी UPSC ने पैटर्न चेंज कर दिया है तो उससे भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है फिलहाल. तो
8: IAS बनके आप क्या चेंज करना चाहेंगे?
7: अभी जैसे जो मेरा रीजन है वो ये कि आज के टाइम पे जो लड़कियों को देखते हैं वो ऐसे देखते हैं कि कुछ नहीं करेगी, ज्यादा पढ़ाओगे हाथ से निकल जाएगी, भागेगी. तो मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि अगर घर वाले सपोर्ट करते तो लड़की बहुत कुछ कर सकती है और पूरी सोसाइटी को चेंज करने की उसमें ताकत है.
8: कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, जिसे देखकर आपको लगता है अगर ये कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती?
7: मूवी अभी मैंने रिसेंट में 12th Fail देखी थी, तो उसमें देखा कि वो इतनी मेहनत करके जब वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकता है तो उससे ज्यादा टाइम हमारे पास है, सोर्सेज हैं, तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और शायद कम टाइम में भी कर सकते हैं.
8: क्या बात है, आपको जीवन में बहुत सफलता मिले और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको एक IAS ऑफिसर के रूप में देखें. हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
7: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी.
2: कितनी हैरानी होती है ना देखकर कि आजकल ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, कितने ज्यादा फोकस्ड हैं, कितने ज्यादा अवेयर हैं और कितना ज्यादा जो है कहना चाहिए कि दुनिया से जुड़े हुए हैं और इतना कनेक्टेड जो है इश्यूज के साथ भी हैं ये, जितना कनेक्टेड आपस में रहते हैं ये. एनीवेज टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके बावजूद जो सपने होते हैं ना उसका सॉफ्टवेयर किसी टेक्नोलॉजी से नहीं आ सकता. उसका सॉफ्टवेयर आता है तो केवल एक ही चीज से आता है, और वो है इंसान की अपनी सोच से, उसके अपने ख्याल से. और ऑब्वियसली उसको पूरा करने के लिए जो चाहिए होता है ना वो मेहनत भी कहीं और से नहीं आती बल्कि खुद ही करनी पड़ती है. हमारे इन स्टूडेंट्स को इतने ढेर सारे सपने देखने के लिए और इतने बड़े बड़े लक्ष्य जो उन्होंने अपनी आंखों के आगे रखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो भी मेहनत करनी है उसके लिए, सब चीजों के लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है मैं अपनी तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से और रेनबो की तरफ से जो है वो देती हूं. और आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम जो चल रहा है, नाम है उसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग. कैंपस लाइफ से जुड़ते हैं हम हर हफ्ते बुधवार के दिन सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पे 4 से 5 बजे के बीच में. और इन्हीं सपनों के नाम हमारे प्रोग्राम का अगला सॉन्ग मैं प्ले करने जा रही हूँ. आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो.

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। अदिति महाविद्यालय पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा। और ये कॉलेज जो है 1994 में जो है दिल्ली के बवाना क्षेत्र में जो एस्टैब्लिश किया गया था, और इस कॉलेज का एक ही जो है सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि जो लड़कियां ग्रामीण परिवेश से आती हैं उनको हायर एजुकेशन का मौका जो है वो जरूर मिले। और न केवल मौका मिला है बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ऊंचे ऊंचे सपनों की उड़ान भी भरी है। आइए जानते हैं कि हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने आगे स्टूडेंट्स से क्या बातचीत की।
1: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के इस स्पेशल एपिसोड जहां हम एक कैंपस में विजिट करते हैं, आज मैं आई हूं अदिति कॉलेज और इस कॉलेज की बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियों के बीच में हूं। क्या नाम है आपका?
2: थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अंजलि भारद्वाज है, मैं अदिति कॉलेज से हूं, अभी मैं थर्ड ईयर में हूं और मेरा कोर्स है बैचलर इन ऑनर्स ऑफ सोशल वर्क।
1: ओके, आप सोशल वर्क की स्टूडेंट हैं, तो ऐसा क्या होगा जो आप हमारे कंट्री के बारे में या आप समाज के बारे में बदलना चाहेंगी?
2: बिल्कुल, चेंजेस तो मैं बहुत सारे लाना चाहती हूँ और एक सोशल वर्क का काम ही होता है इनिशिएटिव लेना, तो मैं चाहती हूँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सलूशन फ्री थेरेपीज के थ्रू सॉल्व कर सकूँ।
1: क्योंकि कहा कि आप मेंटल हेल्थ पर वर्क करना चाहती हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपने भी देखी होंगी अपनी लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए होंगे, तो अगर आपकी लाइफ पर हम एक मूवी बनाएं जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे तो उसका नाम क्या रहेगा?
2: डोंट गिव अप।
1: अच्छा, आपने कहा कि आप मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहती हैं और कहते हैं कि जो चीजें हम खुद नहीं कर सकते वो दिमाग की शक्ति हमसे करवा देती है। अगर आपको एक जादुई शक्ति मिल जाए, आपके अंदर कोई मैजिकल पावर आ जाए, कोई सुपर पावर्स आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप फिर क्या करना चाहेंगी, क्या बदलना चाहेंगी?
2: मेरे हिसाब से सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है और उसके सोल्यूशन उनके हिसाब से अलग है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग बिग मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि मैं लोगों को करेज एम्पावर कर सकूं सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके किसी की हेल्प के बिना।
1: कोई एक ऐसा गाना बताइए हमें जो आपको डिफाइन करता हो, जो आपको बताता हो।
2: मुझे क्या बेचेगा रुपया बाबा।

0: अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया।
1: बहुत बहुत बढ़िया, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच मैम।
1: एक और बहुत ही प्यारी सी लड़की हमारे साथ है, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम सौम्या पांडे है, मैं बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता की चौथे वर्ष की अदिति महाविद्यालय की छात्रा हूँ।
1: तो इस कॉलेज में आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: वैसे सबका ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का होता है, पर मैं पहला बैच मेरा ऐसा जो मैंने 4 साल का किया है, तो यहाँ पे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और जो एक स्टेज फेयर मुझे था वो आके यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, और यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, बहुत डेवलप किया है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक आपके साथ एक गेम खेलते हैं हम, ठीक है? दिस और दैट। ओके, तो आप उड़ना पसंद करेंगी या इनविजिबल होना?
2: उड़ना
1: आप मोबाइल के बिना रह सकती हैं या इंटरनेट के बिना?
2: मैं मोबाइल के बिना रह सकती हूँ नहीं।
1: लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं। ओके, माउंटेन्स और बीचेस,
2: माउंटेन्स
1: आप अपना भविष्य देखना चाहेंगी या अपने पास्ट को चेंज करना चाहेंगी?
2: भविष्य
1: और कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें बस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और उन्हें लगता है कि यही परम सत्य है। लेकिन चलिए जानते हैं इस प्यारी सी लड़की से कि ये सच है या एक केवल एक मिथ है। अच्छा, लोग कहते हैं कि वन नाइट फाइट करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये मिथ मिथ है, रियलिटी है?
2: ये मिथ है, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और कोई सालों से पढ़ रहा है और आप वन नाइट में कर लोगे, आप पास हो सकते हो, बट आप उसमें मतलब जीत नहीं सकते, आप उसको मतलब टॉपर नहीं बन सकते हो।
1: अच्छा, एक और मिथ है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पर हमारे आके एक अलग तरीके की फ्रीडम होती है, और उस फ्रीडम में हम इतने खो जाते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं यहाँ पर, और दोस्त हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो एक मिथ ये भी कहता है कि जितने ज्यादा दोस्त होंगे ना उतने ज्यादा आप खुश रहेंगे।
2: पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज में मैंने भी बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाए हैं। मेरे जूनियर्स के साथ मेरा बॉन्ड ज्यादा अच्छा रहा है, बट बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है, पर फिर भी 4 साल मैंने बहुत अच्छे से बिताए हैं।
1: ओके, अच्छा, एक मिथ ये भी कहता है कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आपका पढ़ाई में कभी ध्यान लग ही नहीं सकता, इस बारे में आप क्या कहती है?
2: मैं यही कहूंगी, ये भी एक मिथ है। अगर मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं पढ़ रही हूँ तो शायद मैं उसमें पढ़ सकती हूँ बैठ के। ये मेरे फोकस पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी देर पढ़ रही हूँ।
1: एक ऐसा मिथ जो हम सभी को जरूर जानना चाहिए एक स्टूडेंट से, और वो ये है कि द फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस।
2: ये एक रियलिटी है, क्योंकि जब हम फेलियर आता है हमारी लाइफ में तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हम उससे बेटर करने का, और हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं अपने सक्सेस के लिए।
1: यानी फेलियर इज इम्पॉर्टेंट।
2: या एब्सोल्युटली
1: क्या बात है सौम्या, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, सीखने का मौका मिला, और जो हमारे साथ में जो स्टूडेंट सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो भी जरूर उनके दिमाग में अगर ये मिथ्स हैं तो वो जरूर इन पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू।
1: क्या नाम है आपका?
3: हेलो, मेरा नाम तनुश्री है, मैं अदिति महाविद्यालय के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ, बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार, थर्ड ईयर।
1: तो आपने जर्नलिज्म किया है, तो आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके?
3: बहुत सारी चीजों में मतलब मेरे को इंटरेस्ट है, तो लाइक जैसे क्राइम रिपोर्टिंग में भी है, एंटरटेनमेंट में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लाइक मैं तो लाइक मेरा उस फील्ड में भी है, लाइक एक्टिंग एंड ऑल भी मैं कर सकती हूँ।
1: अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर अक्सर तौर पर युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो होती है ट्रोलिंग की। आपको क्या लगता है कि जैसे ट्रोलिंग की समस्या है उसे कैसे डील करें वो लोग?
3: देखो, मैं ना ट्रोल पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, बिकॉज आई थिंक उसमें मेरा टाइम जा रहा है, मेरी इमेजिनेशन है, और जो मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ उसको मैं अपनी तरह ही प्रेजेंट करूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म हो कि मेरा व्यू दूसरों को दिखे। तो आई थिंक उस पर ध्यान ना देके मैं अपने कंटेंट को और बेटर करूंगी और अपने ट्रोलर को अपने फॉलोअर्स में चेंज करूंगी।
1: आपका बहुत ही अच्छा विचार है, ठीक है? केवल एक लाइन में हम कुछ सवालों के आपसे जवाब चाहेंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, जैसे कि जब एक हीरोइन की एंट्री होती है तो पीछे बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, तो वो गाना कौन सा होगा?

0: बहुत ही बढ़िया म्यूजिक और बहुत ही बढ़िया गाना। तो यानी आप भी बनी की तरह उड़ना चाहती हैं, गिरना चाहती हैं, उठना चाहती हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहती।
1: यस
0: क्या बात है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे सपने पूरे हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आप सभी के साथ। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची अतिथि महाविद्यालय। वैसे इस बहाने ना इस प्रोग्राम के बहाने हमें एक वो काम करने का मौका मिलता है जो अक्सर हम में से बहुत से लोग करना चाहते हैं और वो ये है कि जहां से हम स्टूडेंट बन के निकले हैं उन्हीं कॉलेजेस में हमें वापस जाने का मौका मिलता है और उसके साथ साथ ये देखने का मौका मिलता है कि किस तरह से दुनिया आगे बढ़ गई है किस तरह से दुनिया बदल गई है और यही एक्सपीरियंस करते हैं हम इन्हीं कॉलेजेस में जाकर और हर बार ले आते हैं आपके लिए एक नया कॉलेज अतिथि महाविद्यालय एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए और ऋचा पहुंची वहां पे और वहां पे की उन्होंने वहां की प्रिंसिपल से बातचीत आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार मेरा नाम है ऋचा और आज मैं आई हूं अतिथि महाविद्यालय। इस वक्त कॉलेज की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर नीलम राठी मैम मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
2: धन्यवाद ऋचा।
1: मैम क्योंकि अभी एडमिशन्स होने वाले हैं और एडमिशन्स को लेकर कॉलेज की क्या तैयारी है?
2: एडमिशन्स को लेकर कॉलेज ने अपनी बिल्डिंग को नए सिरे से रेनोवेट करने की कोशिश की है। नए कोर्सेज पर हम लोगों ने बहुत तैयारी की है। इसके साथ साथ सभी टीचर्स का वर्कलोड टाइम टेबल और कैसे हम छात्रों को कॉलेज तक लेकर आए उसके लिए जो दूर दूर से छात्राएं आएंगी उसके लिए हम लोगों ने डीटीसी के मैनेजर से भी बात की है और यहाँ के जो डिपो मैनेजर हैं उनसे हमारी मीटिंग भी हुई है जिसमें हमने कुछ नए रूट्स पर लेडीज स्पेशल बसेज चलाने की बात भी की है।
1: मैम जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारा क्योस होता है बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं लेकिन आप क्या सलाह देना चाहेंगी एक प्रिंसिपल के रूप में कि बच्चे जब एडमिशन के लिए आए तो उन्हें किन इम्पोर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
2: मुझे लगता है तीन चीजें उन्हें मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए। प्रथम तो कि ये देखें कि वो जहां से आ रहे हैं वहां से कॉलेज की दूरी कितनी है उनको आने जाने में कितना समय लगेगा। दूसरी बात कि जो कोर्स वो लेना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में है या नहीं है और तीसरे और सबसे जहां अच्छी फैकल्टी हो उस कॉलेज को उन्हें चूज करना चाहिए। तो इन तीन बातों पर वो ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके कैरियर के लिए बहुत बेहतर रहेगा।
1: मैम कॉलेज में अतिथि महाविद्यालय में इस वक्त कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या इस साल हम कुछ नए कोर्सेज की उम्मीद कर सकते हैं कॉलेज में?
2: अभी तक अतिथि महाविद्यालय में जो कोर्सेज हैं उसमें बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम है। इसके अतिरिक्त हमारे पास बीएलएड जो 4 वर्ष का कोर्स है जिसमें बीए प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग एक साथ दी जाती है वह कोर्स है। पत्रकारिता ऑनर्स है ज्योग्राफी ऑनर्स है और इसके अतिरिक्त बीए प्रोग्राम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जैसे इकोनॉमिक्स है मैथ्स है होम साइंस है जिसे अभी कम्युनिटी साइंस के नाम से एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस होगा वह है हिस्ट्री है पॉलिटिकल साइंस है। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है।
1: मैम जब बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस वक्त वो सबसे कॉमन गलती क्या करते हैं आपके अनुसार?
2: मुझे लगता है कि जब एडमिशन ले रहे होते हैं स्टूडेंट वो एक तो फॉर्म भरने में गलती करते हैं। फॉर्म भरने में गलती ये करते हैं कि जब वो साइबर कैफे में जाते हैं एडमिशन के लिए तो साइबर कैफे वाला बहुत इजी वे चाहता है जैसे वो कहते हैं कि कोर्स कौन सा ऑप्ट करना है तो वो ऑल कर देते हैं उसमें पर्टिकुलर किस कोर्स में जाना है उसको चूज ना करके वो ऑल कर देते हैं और उससे और दूसरे ऐसे ही जब कॉलेज की च्वाइस भरते हैं तब भी वो ऑल कर देते हैं तो इससे बड़ा नुकसान होता है। हर कॉलेज में उनका नाम चला जाता है लेकिन मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए जब भी वो फॉर्म भरें सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि वो अपने सेलेक्ट जो इस कोर्स में लेना चाहते हैं वही कोर्स भरें और जिन कॉलेजों में उनके वो सचमुच में प्रेफरेंस चाहते हैं उन्हीं कॉलेजों की प्रेफरेंस भरें। ये तो एक कॉमन एडमिशन के लिए सभी छात्रों के लिए है। इसके अतिरिक्त जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं वो भी दो तरह से बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो जो दिल्ली के ओबीसी शेड्यूल में जो आते हैं उसमें कुछ कास्ट ऐसी आती हैं जो दिल्ली स्टेट के शेड्यूल में है सूची में है लेकिन वो केंद्र की सूची में नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए उन जाति के छात्रों को कि वो जब आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वो ये देखें कि अतिथि महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है और उसमें केवल केंद्रीय आरक्षण सूची ही लागू होती है। तो ये बहुत ध्यान रखें और दूसरे ये भी ध्यान रखें कि ओबीसी का सर्टिफिकेट केवल और केवल वही वैलिड है जो कि 31 मार्च 2026 के बाद का बना हुआ होगा अर्थात अप्रैल ऑनवर्ड्स जो सर्टिफिकेट होगा वही एडमिशन में ओबीसी का लागू होगा।
1: मैम जैसे कि बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन अगर उनके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तो क्या कॉलेज उन्हें कोई स्कॉलरशिप या कोई पैसे की मदद या कोई इस तरह की कोई सहायता उन्हें देता है?
2: देखिए, जहाँ तक है हमारे पास सभी स्कॉलरशिप्स हैं जो केंद्र की सूची की हैं, जो केंद्र की स्कॉलरशिप्स हैं, जो स्टेट की स्कॉलरशिप्स हैं, ये इन दोनों स्कॉलरशिप का हमारी छात्राओं को फायदा मिलता है। इसके साथ साथ हमारे जो शिक्षक हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं, वो भी ऐसे छात्रों को जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं लेकिन उनकी परसेंटेज अच्छी है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको भी गोद ले लेते हैं। मतलब हम कई ऐसे छात्रों की हमारे शिक्षक और कर्मचारी फीस भरते हैं, साथ ही पूरे साल भी कई बार उनकी फाइनेंशियली मदद करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
1: हम जो न्यू स्टूडेंट कॉलेज में आना चाहते हैं उनके लिए आदिति महाविद्यालय की प्राचार्य होते हुए, प्रिंसिपल होते हुए, आपका उनके लिए क्या मैसेज है?
2: मेरा उनके लिए मैसेज है कि वो आदिति महाविद्यालय में प्रवेश लें। यहाँ की शिक्षिकाएं और कर्मचारी बहुत ही सक्षम है, वो अनुशासन बनाए रखें और साथ ही आत्मनिर्भर और संस्कारवान बनने की दोनों की ही प्रेरणा आदिति महाविद्यालय में मिलती है। और केवल प्रेरणा नहीं, हम ऐसी अनेक कक्षाएं आयोजित करते हैं जिसमें कंपटीशन के लिए भी छात्रों को गाइड किया जाता है, जैसे यूपीएससी की, बैंकिंग की, सीए की, इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए भी हमने अपने यहाँ पर सोसाइटीज बनाई हुई हैं और हमारे शिक्षक उनको समय समय पर गाइड करते हैं। तो इसीलिए आदिति में आए, आत्मनिर्भर बने, शिक्षित बने और संस्कारवान बने, ये मेरा संदेश है आने वाले छात्रों के लिए।
1: मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद ऋचा, आदिति महाविद्यालय को चूज करने।
0: अभी आपने सुनी हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा की बातचीत और ये बातचीत उन्होंने की दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज आदिति महाविद्यालय के प्रिंसिपल से। इसी तरह से हर बार आपके लिए लेकर आते हैं हर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक नई बात, एक नया कॉलेज, एक नया कोना। एक बार फिर से आपके लिए अगले हफ्ते ये प्रोग्राम जो है वो हाजिर होगा और आपके लिए फिर नई जानकारी लेकर आएगा। फिलहाल आज का अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। समय था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी। उन्होंने इस घटना को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा तथा मर्यादा के विरुद्ध बताया। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान

0: काम करना यह हम सब की जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition parties' protest over various issues including NEET paper leak case and student protests. When the Lok Sabha assembled after the second adjournment at 2 p.m., the opposition again started sloganeering over the NEET issue. Amid uproar, the House passed a resolution to suspend Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the rest of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Tenneti said Kalyan Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal moved the resolution, which was passed by voice vote. As the ruckus continued, the presiding officer adjourned the House till tomorrow. Earlier, speaking in the House, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules.
3: Sarkar NEET paper leak.
4: The government is fully prepared to discuss the NEET paper leak issue. I request that the Honorable Speaker discuss with the floor leaders of all parties and decide when the discussion should take place, how long it should continue and under which rule it should be conducted. The government is completely ready to discuss the NEET paper leak issue.
3: Paper leak pe charcha karne ka tayar hai.
2: The Rajya Sabha also witnessed similar scenes. When the House reassembled after the third adjournment at 3 p.m., the opposition parties protested over the NEET and other issues. Deputy Chairman Harivansh said the government is ready for discussion on the NEET issue and the opposition should cooperate in running the House. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress party of creating obstacles in conducting the discussion in the house by imposing new conditions. Amid uproar, the deputy chairman adjourned the house till tomorrow. Defense Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the center is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youths and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi.
0: और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.
4: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
0: उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है.
2: The BJP has condemned Leader of Opposition Rahul Gandhi's sit-in outside the gate of the Prime Minister's residence yesterday without permission and termed it irresponsible. Talking to media in New Delhi, BJP MP Ravi Shankar Prasad said, despite knowing the dignity associated with the Prime Minister's residence, Mr. Gandhi displayed irresponsible conduct. The BJP MP stressed the importance of security protocols, stating that the Prime Minister's security is of paramount importance. In Kashmir, a policeman was killed today in a terrorist attack at the Lal Chowk area of Anantnag district. According to senior police officials, security forces immediately cordoned off the entire area after the attack and a search operation is underway to apprehend the terrorists. Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah paid tributes to the slain policeman and assured that those responsible will be brought to justice. The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on alleged use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. A bench of Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Tejas Karia directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The matter would be heard next on the 11th of September this year. Railway Minister Ashwini Vaishnav today said rail safety has been strengthened through modern technology, infrastructure and enhanced maintenance. In a written reply in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the expenditure on safety-related activities has increased from around 39,000 crore rupees in 2013-14 to over 1,20,000 crore rupees in 2026-27. And with that, we end this news bulletin.
5: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিউজ অন AIR মোবাইল এপতো শুনিবলৈ পাব। প্ৰিয় শ্ৰোতা, ষ্টুডিঅ' আৰু ডিউটি ৰুমৰ দায়িত্বত মজুলী দেৱী, মোৰ সৈতে এতিয়া বিভিন্ন দায়িত্বত আছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত অপূৰ্ব কৃষ্ণ বুঢ়াগোহাঁই, ফটিক চন্দ্ৰ বৰ্মন, আয়ুষ্মান জেচি, ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ, ট্ৰান্সমিটাৰত ৰমেন কুমাৰ শৰ্মা আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে যুৱক যুৱতীসকলৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান যুৱবাণী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতেই হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों

0: के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament were adjourned for the day today following repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. In the Lok Sabha, amid the uproar, the House passed a resolution by voice vote suspending Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the remainder of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Tenneti said Mr. Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Earlier in the day, Speaker Om Birla appealed to opposition members to allow the House to function smoothly and said the government was ready for a discussion on the NEET issue. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju also reiterated that the government was prepared for a meaningful debate involving all sides under established parliamentary rules and keeping in mind the future of the country's youth. The Rajya Sabha also witnessed repeated disruptions over the NEET issue and other matters. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Leader of the opposition Mallikarjun Kharge demanded the resignation of the Union Education Minister, saying the discussion could not proceed without it. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by the students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi.
2: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
1: The Delhi High Court today sought responses from the centre and Delhi police on alleged use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. The matter would be heard next on the 11th of September this year. Railway Minister Ashwini Vaishnav today said rail safety has been strengthened through modern technology, infrastructure and enhanced maintenance. In a written reply in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the expenditure on safety-related activities has increased from around 39,000

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে সংৰক্ষিত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তা শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰবাচক যতীন শৰ্মা। আদৌ মুখ্য বাৰ্তাঃ। কেন্দ্রীয় সর্বকার সংসদি নীট প্রশ্নপত্র গোপ্যতা ভঙ্গ বিষয়ে সারগর্ভাম চর্চা বিধাতুম অঙ্গীকৃতবান। তথাপি বিপক্ষস্য শ্রান্তম কোলাহলেন প্রাবৃত সত্রস্য তৃতীয়েপি দিনে উভয়োঃ সদনয়োঃ কার্যাচরণম স্থগিতম। সোমবাসরে সংসদ ভবনম প্রতি আন্দোলনম কুর্বৎসু প্রদর্শনকারীষু আরক্ষকৈঃ কৃতায়াঃ অত্যধিক বলপ্রয়োগস্য আশঙ্কায়াঃ প্রকরণে দেহলী উচ্চ ন্যায়ালয়ঃ কেন্দ্র সর্বকারাত দেহলী আরক্ষক বিভাগাচ স্পষ্টীকরণম আহূতবান। ফিলিপিন্স দেশস্য মনিলা নগরে সমায়োজিতে কোয়াড মঞ্চস্য বৈদেশিক মন্ত্রিণাম উপবেশনে মন্ত্রিভিঃ মুক্ত উন্মুক্ত সমাবেশে হিন্দ প্রশান্ত ক্ষেত্রায় স্বকীয়া প্রতিবদ্ধতা পুনরাবর্তিতা। অসমরাজ্যে ভীষণ জলপ্লাবেন স্থিতিঃ অদ্যাপি অত্যন্তম গভীরা বর্ততে যত্র জলৌঘে মৃতকানাম আহত্য সংখ্যা সংবর্ধ্য একত্রিংশত সম্প্রাপ্তা। अपि च चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां पराजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम अथ च छात्राणां विरोध प्रदर्शनम समेत्य विभिन्न प्रकरणेषु विपक्षिणां तृतीय दिवसेपि सदस्यानां अविरत कोलाहलत्वेन संसदः उभय सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा लोकसभायाः कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा विक्षेपेण नीट प्रकरणमधिकृत्य उच्चैः कोलाहलो विहितः। अत्रांतरे सदनेन तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः कल्याण बैनर्जी इत्यस्य वर्षाकालीन सत्रस्य शेषावधेः निलंबन प्रस्तावोपि पारितः। पीठासीनः कृष्णा प्रसाद टेनेटी न्यगादीत् यत् कल्याण बैनर्जी इत्यसौ महिला सांसदानां विरुद्धं आपत्तियुक्ताम् असंसदीय टिप्पणीं विहितवान्। घटनेयम् आपत्तियुक्ता सदनस्य मर्यादायाः विरुद्धा च इत्यपि सः प्रावोचत्। संसदीय कार्य राज्यमन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन एषः प्रस्तावः उपस्थापितः यश्च ध्वनिमतेन पारितः। निरन्तर कोलाहलेन पीठासीनाधिकारिणा लोकसभायाः कार्याचरणम् आगामि दिनं यावत् अपवारितम्। राज्यसभायामपि एतादृशः एव दृश्यः दृष्टिम् अगात्। अपराह्णे त्रिवादने तृतीय स्थगनात् परं यदा उच्च सदनं समवेतं तदा विपक्षिदलानि नीट विषये अन्य प्रकरणेषु च विरोधं प्रादर्शयन्। उपसभापतिः हरिवंशः अवदत् यत् सर्वकारः नीट विषये चर्चायै सज्जः अस्ति, विपक्षेण च सदन संचालने सहयोगः करणीयः। उच्चसदने भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः कांग्रेसदलेन नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य सदने चर्चायां विघ्नोत्पादनाय

0: भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है।
1: संसदी विपक्षेण कृताम् असंसदीय बाधामधिकृत्य रक्षामन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारः सर्वस्मिन्नपि ज्वलन्त विषये सारगर्भयुतां विचार चर्चां कर्तुं सदैव सन्नद्धो वर्तते, किन्तु विपक्षः समस्यानां समाधानं संसद्भवनस्य अपेक्षया मार्गेषु कर्तुम् अनुचितं प्रयासं करोति। अद्य लोकसभायां रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिक्या आधारभूत संरचनया समुन्नत रक्षणकार्यैः च रेलसुरक्षा अतीव सुदृढा विहिता। लोकसभायां लिखित उत्तराधारेण श्रीवैष्णवेन प्रतिपादितं यत् सुरक्षाकार्याणां व्ययः 13,2000 वर्षे 13,000 कोटिरूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 1,20,000 कोटिरूप्यतोप्यधिकं संजातम्। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां 1:14, 9:21, 1:10 इत्यंकांतरालैः पराजित्य महिला एकल वर्गस्य राउंड ऑफ 32 स्पर्धां विजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।
2: বাতৰিৰ পাছতে উভৰি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডি আৰ এফ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যোগে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো মৃন্ময়ী ঘোষৰ কণ্ঠত ভজন।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: সচলতাৰ কণ্ঠৰ ভজনটি শুনিলে আৰু এই ভজনটিৰে সামৰিব লাগিব আমাৰ আজিৰ ভজনৰ অনুষ্ঠানটি। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনাব।
1: আপ পৰেশানিও সে ঘিৰে হে, মন ভাৰী হে আৰু কোই ৰাস্তা নজৰ নহি আ ৰহা, যাদ ৰখে সমাধান আপকে পাস হে। টেলিমানস কে নিশুল্ক নম্বৰ 14416 পৰ কল কৰে, কহি সে ভি কবি ভি 24 ঘণ্টে ইয়া সুবিধা উপলব্ধ হে। ইয়া আপকি বাত সুনি জাতি হে, সমঝি জাতি হে আৰু আপকো সহি দিশা দি জাতি হে। আপ অকেলে নহি হে, মদদ বস এক কল দূৰ হে।
2: নমস্কাৰ, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार, युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित, विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
3: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने बने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
6: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
7: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
2: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: नामची जिले के एनएचपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएचपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाखा से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
9: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. Mr. Modi also highlighted that the widespread adoption of initiatives such as the PM Kusum scheme by farmers can bring transformative changes to the agriculture sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NET paper leak issue in Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue, involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
11: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rule should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
10: Mr. Rijiju's remarks came as both Houses of Parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue.
11: From the very beginning, the Congress party also said that it wanted a discussion and the chair has expressed the same. However, instead of allowing the discussion to take place, the Congress is once again looking for excuses by imposing conditions. When the government itself has clearly stated that it is ready for a discussion, there is no need to attach additional conditions. By doing so, the Congress appears to be creating another pretext to prevent the discussion from taking place. This should not be done.
10: Leader of the opposition Mallikarjun Kharge said the discussion could not proceed without the resignation of the Union Education Minister.
12: If there is to be a fair discussion, the education minister should resign. Until the minister resigns, an impartial discussion cannot take place here. I urge the government to ensure that the minister submits his resignation.
10: We have more from our correspondent.
5: On the third consecutive day of monsoon session, the proceedings of both the houses of parliament were disrupted by repeated adjournments following opposition uproar. Due to disruption, both Lok Sabha and Rajya Sabha failed to transact any substantive business. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued with their protest. Today, the Lok Sabha was adjourned thrice and Rajya Sabha was adjourned four times. In Lok Sabha, Speaker Om Birla said he heard the views of both sides and noted the government's willingness to hold a discussion with an open mind. He urged opposition parties to participate in a detailed debate instead of disrupting proceedings. The Lok Sabha also passed a resolution to suspend Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the rest of the monsoon session for using inappropriate language against women MPs. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
10: Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youths and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as a political tool to serve their own political interests.
13: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interests. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
10: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda today said the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized. Addressing media in New Delhi this evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said it is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. The matter will be heard next on the 11th of September this year. Activist Sonam Wangchuk has said he would end his hunger strike if the government provides assurance that no legal action would be taken against the young protesters demanding accountability over the NEET paper leak. In a letter to Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, Mr. Wangchuk thanked both the ministers for visiting him at the hospital last night. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Railway Minister Ashwini Vaishnav today said train accidents have declined sharply in the country due to improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. In a written reply in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the number of consequential train accidents has reduced from 135 in 2014-15 to just 2 accidents in this financial year so far. He said the expenditure on safety-related activities has increased from around 39,000 crore rupees in 2013-14 to over 1,20,000 crore rupees in 2026-27. The government has disabled 50 OTT platforms for public access in the country in the last 2 years for displaying obscene content. In a written reply in the Lok Sabha, Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan said the government regularly takes action against such intermediaries and OTT platforms based on complaints. The West Bengal government today constituted the 7th Pay Commission. The commission will recommend revisions relating to the salaries, allowances, promotions and pensions of employees and pensioners of the state government and government-aided organizations. The panel will submit its report to the state government within the next 6 months. A meeting of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust was held in Ayodhya today, during which several key decisions were taken on temple management, the donation system, appointments and administrative reforms. The trust discussed the appointment of a chief executive officer, filling vacant posts and the reconstitution of its religious committee. The trust reiterated that devotees' faith remains strong and that there has been no decline in the number of devotees visiting the Sri Ram Janmabhoomi temple despite various allegations and controversies. It said the final report of the special investigation team has not yet been received and the issue did not come up for discussion during the meeting. In Jammu and Kashmir, a policeman was killed today in a terrorist attack at the Lal Chowk area of Anantnag district. A search operation is underway to apprehend the terrorists. Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Umar Abdullah assured that those responsible would be brought to justice. In Sikkim, rescue teams have traced 8 more bodies inside the under-construction tunnel at Samardung in Namchi district. We have a report.
8: Multiple agencies are working round the clock to rescue the people trapped inside the NSPC tunnel on the third day today, but low visibility and leakage of methane gas made it difficult to retrieve the trapped bodies. The 8 bodies are lying around 2 km away from the mouth of the tunnel. Meanwhile, the Sikkim government today handed over the mortal remains of the deceased to their families. Apart from the center, the Sikkim government and NSPC announced ex gratia to the deceased families. At least 25 people are fear trapped inside the tunnel when the incident occurred. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
10: Heavy rains continue to disrupt normal life in South Gujarat, with Surat, Valsad and Navsari facing flood-like conditions. More from our correspondent.
14: Kaprada in Valsad district recorded over 16 inches of rainfall within the last 24 hours, while Nanaponda received nearly 11 inches and Chikli in Navsari recorded about 10 inches of rainfall. Rising water levels in key rivers and reservoirs have prompted high alerts across the region. Heavy inflow continues into the Damanganga reservoir. Over 8,000 residents from the vulnerable low-lying areas have been shifted to safer locations, primarily in Surat, Navsari and Valsad. Disaster response forces, including 11 NDRF teams and 24 SDRF platoons, have been deployed to carry out relief and rescue operations in rain-affected districts. Meanwhile, Weather Department has issued a red alert for South Gujarat region today and strictly advised fishermen not to venture into the sea until 24th July due to rough conditions. Aparna Khunt, Akashvani News, Ahmedabad.
10: The Inter-Meteorological Department has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Gujarat and central Maharashtra tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Jharkhand, Karnataka, Odisha and Rajasthan. President Draupadi Murmu today unveiled a bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje in North Macedonia. Addressing the gathering, the president said Mahatma Gandhi's ideals of dialogue, compassion and peaceful coexistence remain highly relevant in a world facing conflict, intolerance and division. The United States has condemned Iran-backed and Yemen-based armed group Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that the situation would be de-escalated. Mr. Rubio said anything that restricts shipping through the Red Sea would be problematic for the same reasons that the Strait of Hormuz is problematic. Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid the ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. In China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty entered singles pre-quarterfinals at Changshuo today. Two-time Olympic medalist Sindhu advanced to the second round of women's singles after defeating compatriot Unnati Huda in a round round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police and pleas alleging use of excessive force on protesters. And in China Open Badminton, BBC.

जो आवाज लगाई चोटी कर दूंगा।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋಳೆ ಕಚ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಪಕಡ ಕರಕ ಗದೆ.

গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে শ্ৰীনিবাস আৰু গীতৰ কথা জাভেদ আখতাৰৰ।

Bandi Mataram.